0: गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। भैया कैसे हैं आप? सब कुछ मजे में? बढ़िया
1: एकदम। वो सताक्षी कहने से ऐसा फील होता है ना कि बस कोई ऐसे ही अपने अपन की बातें जो है वो करता रहे और अपनेपन का एहसास दिलाता रहे, तो कितना अच्छा लगता है ना। देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ अपनापन फील करें और आपको बहुत अच्छा लगे। आप एक फैमिली जो है वो आप हमारी बन चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि हम भी आपके एक फैमिली के तौर पर जो है वो आपके घरों में इस वक्त सुने जा रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी ना अनजानों के साथ भी एक एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो कभी ना खत्म होने वाला रिश्ता होता है। कुछ ऐसा ही साथ तो हमारा और आपका बन गया है। विश हमेशा मेरी यही होती है कि आप हमेशा बहुत खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, जिंदगी को जीते रहें, अपनों के साथ रहें। और इसी विश के साथ आज भी लेकर आई हूँ आपके लिए आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। तो चलिए बिना देर किए करते हैं आज के सफर की शुरुआत एक बार फिर से मिलकर और आगे बढ़ते हैं इस अगले गीत के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, आप सुन रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस।

वेलकम बैक इट हैपेंस एंजॉय करें आप सताक्षी के साथ रीच ब्रिस्वानी 1701 AM पर इट हैपेंस में हम अपने प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़े। उसके पहले विश करेंगे उन्हें जिनके लिए है आज एक बार फिर से आज का दिन स्पेशल और खास, यानी जन्मदिन जिनका है, भाई बहुत बहुत मुबारक आज का दिन। और हम यही दुआ करते हैं हमेशा की तरह कि हर जायज और मुकम्मल ख्वाहिश जो है वो आपकी आपको मिले, पहुंचे आप तक, ईश्वर आपको सब कुछ दे और वो भी दे जो शायद आपने इस यूनिवर्स से, ईश्वर से एक्सपेक्ट नहीं किया है। जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। ये जिंदगी जो है ये आपके लिए खास रहे, अनमोल रहे और आप दोनों जिंदगी के सफर पे एक दूसरे का हाथ थामे हुए हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ सबसे आगे खड़े हो। इसी विश के साथ विश करूंगी उन्हें भी जिनके लिए है आज का दिन स्पेशल और खास। आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट आज के दिन के लिए और आप सबको डेडिकेट करेंगे ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस।

0: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

इटहैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ग्रिस्वानी 1701 AM पर। ओवरथिंकिंग, जब भी ये वर्ड हमारे सामने आता है तो हम और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और ज्यादा कई सारी चीजों को सोचना जानना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखिए, अगर वाकई आपको ओवरथिंकिंग से बाहर आना है या ओवरथिंकिंग को कम करना है, आप क्यों ज्यादा सोच रहे हैं यही तो आपको सोचना है। जी हाँ, ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का सबसे पहला कदम जो है यही है, अपने थॉट प्रोसेस को पहचानिए। हम अक्सर यही नहीं समझ पाते हैं कि हमारा मन बार बार घूम क्यों रहा है, वो क्या सोच रहा है, चिंता क्या वाकई से करनी है उस टॉपिक को लेकर, क्या ये जो बातें वो सोच रहा है ये उसके लिए हेल्पफुल हैं या केवल उसको उलझन पैदा कर रही हैं, क्या ये विचार आपको आगे बढ़ा रहा है या रोक रहा है। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, वो जब आप जानेंगे तो आप सच और इल्यूजन, मतलब आप फालतू क्या सोच रहे हैं और क्या वाकई आपको सोचना है, इसके बीच में आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, अंतर ढूंढ पाते हैं और चीजें आसान हो जाती हैं। कभी कभी आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होता है और धीरे धीरे वो ओवरथिंक करना बंद कर देता है। ठीक है जी, तो चलिए फिलहाल आपको आगे लेकर चलती हूँ इस अगले ट्रैक के साथ। एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

इट हैपेंस एंजॉय करें आप सताक्षी के साथ दोस्तों रेडियो ब्रिस्वानी पर, और इट हैपेंस में आपके साथ मॉर्निंग के कुछ बहुत ही प्यारे गानों को प्ले कर रही हूँ। आई है मतलब मुझे लगता है कि सुबह की एक बेहतरीन शुरुआत तब होती है जब अपनी पसंद के गाने मिल जाएं। और ऐसा नहीं है कि सबको ये फास्ट ट्रैक या मॉर्निंग ट्रैक्स ही पसंद होते हैं, नहीं भाई, मुझे तो कोई दूर से आता रोमांटिक गाना भी अगर रेडियो सेट्स पे सुनाई दे जाता है ना, मेरा तो दिन बन जाता है। मतलब गोल्डन एरा के गाने जो मीनिंगफुल हुआ करते थे उनकी तो बात ही अलग है, और उनके साथ उनको गुनगुनाते हुए मेरा दिन बन जाता है। अच्छा, मेरे साथ एक चीज और भी है, हर सुबह जब उठती हूँ तो एक गाना, चाहे वो स्पिरिचुअल हो सकता है, कवाली हो सकती है, सैड सॉन्ग हो सकता है जो कि मैं अवॉइड कर देती हूँ, बट यस अगर रोमांटिक गाना है तो वो गाना जो है वो मेरे जहन में रहता है और फिर मैं उसे पूरे दिन गुनगुनाती रहती हूँ, वो मेरा वाकई सॉन्ग ऑफ द डे बन जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? होता है तो शेयर कीजिए ना मेरे साथ। फिलहाल मैं प्ले करती हूँ आपके लिए अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, मुझे सुनते रहिए और सुनते रहिए। इट हैपेंस।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: वेलकम बैक, इट हैपेंस, सुन रहे हैं आप रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर। इट हैपेंस में अभी हम हैं गानों की हैट्रिक में। आज के तीन बैक टू बैक ट्रैक्स गानों की हैट्रिक में कौन से हैं? आइए इंजॉय करके देखते हैं।

गानों की हैट्रिक आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर, और गानों की हैट्रिक का ये अगला ट्रैक आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ। इसे सुनिए और सुनते रहिए, इट हैपेंस, और यूं ही रहिए मेरे साथ।

टैपल्स को सुन रहे हैं आप रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। गानों की हैट्रिक का ये खास सफर टैपल्स में इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ। इसी सफर में अभी आगे बढ़ूंगी एक अगले गाने के साथ और इसके बाद टैपल्स में आपके साथ ढेर सारी बातें होंगी। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर मेरा साथ, आपका अपना ब्रेकफास्ट शो, एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी। ये अगला ट्रैक सिर्फ आपके लिए गानों की हैट्रिक।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04-111-27-035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 1-33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04-111-27-035। रिमेम्बर द नंबर इज 04-111-27-035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: सो वेलकम बैक, इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं, सताक्षी के साथ हैं आप और इट हैपेंस में सताक्षी के साथ ही हो रही हैं कुछ बहुत ही प्यारी और बेहतरीन बातें। लोग अक्सर कहते हैं कि छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरा कहना है कि छोड़ने से ज्यादा उस रिश्ते में या उस चीज में रुकना आपको पेन देता है, वो ज्यादा मुश्किल होता है। कई बार हम सोचते हैं ना कि यार चीजें ठीक हो जाएंगी, यार अगर हम ये छोड़कर चले गए तो कैसे होगा, जॉब हमने छोड़ दी तो घर कैसे चलेगा, या फिर अगर इस बंदे को हमने छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और इस लिए हम बहुत सारा पेन गेन करते रहते हैं, है ना, हम उस दर्द के साथ होकर गुजरते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो भी होगा, जिस दर्द में आज हम हैं, उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा। सो रिस्क लेना लाइफ में बहुत जरूरी है, और छोड़ने का रिस्क लेना आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप थक गए हैं एक रिश्ते को निभा निभा के, या एक काम में अपना वक्त दे दे के, तो वहां से निकल जाना, उस रिश्ते से या उस प्रोफेशन से निकल जाना आपके लिए बहुत सही है, और इस डिसीजन की रिस्पेक्ट कीजिए। मैं प्ले करती हूँ आपके लिए अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: आ जा प्यार की होड़ी ले,
2: दिल बोले तो
3: हार्ट हार्ट
4: हमारा यार सौदा सौदा,
3: ओहो
1: दोनों डील कर सी
2: टाइट टाइट वेरी टाइट।

इट हैपेंस जी हाँ, सफर को सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन पर और इट हैपेंस में आपके साथ हो रही है इस मॉर्निंग की कुछ खास बातें। वैसे मॉर्निंग से याद आया यार, यूं तो मॉर्निंग अंधेरे को मिटाकर जिंदगी में आती है, होता है ना ऐसा, तो फिर क्यों ऐसा होता है कि हम सुबह आने के बाद भी, मॉर्निंग आने के बाद भी अपने आप को अंधेरे में बंद करके रखते हैं? नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप घरों में जाकर के स्टोर रूम में खुद के साथ बंद हो गए, बिल्कुल भी नहीं। आपने भी घर की खिड़कियां खोली हैं, आप भी टेरेस पर होंगे या आप भी गार्डन में होंगे, मैं भी क्या आप वॉक कर रहे हूं, लेकिन फिर भी कल की यादें जो कड़वी थी, जो अंधेरे से भरी हुई थी, या वो फेलियर्स जिन्होंने आपको पेन दिया है, दर्द दिया है, आप आज भी अपने आज में भी, इस मॉर्निंग भी आप उसे कैरी करके चल रहे हैं। क्यों? जब रात गुजर गई, अंधेरा छट गया, उजाला हो गया, तो आप भला अपने उस पास्ट के साथ क्यों हैं? आप भी उससे बाहर निकलिए और देखिए कि ये दुनिया वाकई खूबसूरत है, ये उजाला वाकई खूबसूरत है। अंधेरे उन्हें पसंद होते हैं जिन्हें उजाले देखना पसंद ना हो। जब आपको उजाले देखना पसंद है तो फिर जिंदगी में आगे बढ़ना भी पसंद करिए। ठीक है जी, आइए फिलहाल आपको आगे लेकर चलती हूँ एक और ट्रैक के साथ, इसे भी सुनिए एंड स्टे ट्यून्ड। रेडियो ब्रिस्बेन आपके साथ है सताक्षी।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: गो फॉर द बेस्ट विरे। अतुल भारद्वाज जी नु अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अ टन वीरे, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Crane ready ho gaya nahi?
5: Excuse me sir. Haan sir, ek problem ho gaya.
4: Kya?
5: Ki model nahi aa rahi.
4: Kyun?
5: Sir, aapke mobile pe unka phone aaya tha ki wo nahi aayega.
4: La phone de.

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 FM ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां से हमेशा दी तरह करनिया नहीं करनिया हैगिया ने नालो नाल इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसी की कहना है, तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बसवानी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी, bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आई डी है, जरिया तुहानूं जिहड़ा चंगा लगता है तुसीं ओह अपना लो। बस साडे नाल गल्लां बातां दा जरूर करो, है ना। तां फटाफट दे नाल जुड़ना तुसीं शुरू करो, अपनियां फरमाइशां वी रखो, दिल दीआं गल्लां वी करो। ते मैं हुणे वापस आउंनी आं, कल्ले तुसीं बिल्कुल वी नहीं रहोंगे, तुहानूं सुणाउंनी आं इस सोहणे सोहणे गीत।

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो थिएटर के नाल ही ना अजकल ओ टी टी एंटरटेनमेंट दे लई जबरदस्त प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। हमेशा इस दी गल करदे हुंदे आ तो मैं थानू जबरदस्त अलग अलग तरह दी मूवीज बारे भी जरूर दसदी हुंदी आ। ते जितों तक सिर्फ कुछ फिल्मां या सीरीज नहीं बल्कि कई हफ्ते कई ऑप्शंस थानू देखण नू मिल जाणगे जद दर्शक अपने पसंद दे जोनर दी फिल्मां सीरीज देख सकदे हैगे ने। तां अजिहे विच जेकर तुसी मिस्ट्री दे नाल थ्रिलर फिल्मां दे दीवाने हैगे हो ना तां अज मैं थानू कुछ अजिहियां बेहतरीन फिल्मां बारे दसूंगी ना जो ओटीटी ते ट्रेंड करदियां रहियां ने ते जिन्हां दा जदों तुसी एंड देखोगे ना तो तुहाडा अपना सिर हिल जाऊगा। इस तरह दीयां हैगियां ने, मतलब दिमाग सुन्न हो जाऊगा। इस तरह दी मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज हैगियां ने, एक एक करके दस दी सब बारे। पहला सुनो तुसी एक गीत।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अजीत एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सन वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन से बने हुए हो। इस लिस्ट दे विच पहला नाम लिस्ट केड़ी है की है थ्रिलर मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज दी ता इस लिस्ट विच सब तो पहला होंदा है किष्किंधा कांड। हुण तुसी सोच रहे होंगे कि केड़ी फिल्म है किष्किंधा कांड। मलयालम फिल्म है, मलयालम दी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है की है। साल 2024 विच आई सी, थिएटर्स दे विच रिलीज हुई सी। इस दे डायरेक्शन दी कमान डिंजित अय्याथन ने संभाली सी। आसिफ अली विजय राघवन ने वर्गे कलाकारा ने इस विच अहम रोल प्ले किया। इस दी कहानी एक साबका सेना अधिकारी दे इर्द गिर्द घूमती है की है। इस दी कहानी विच अजिहे ट्विस्ट ते मिस्ट्री ते थ्रिलर हैगे ने ना जो दिमाग नूं हिला के रख देणगे। इहनूं हुण तुसीं सोच रहे होंगे कि केड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म ते देखो कि थानूं पता लग जावे कि जो मैं कह रही हूं सच है या नहीं। तो इस नूं तुसीं जियो हॉटस्टार ते देख सकते हो।
1: Y'all really got it f***ed up right now.

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 107.1 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिराल से बने हुए। इस तो बाद अगला नाम इस लिस्ट विच उस फिल्म का हैगा है जो बहुत ही ज्यादा खास है। आई थिंक कईयां देख ली होनी है क्योंकि इन्नी ज्यादा सोहनी फिल्म है ना कि एंड देख के तो तुसी खुद ही हैरान हो जाओगे ते तुसी कहोगे ओहो शुक्र है ये नहीं होया इस तरह का एंड है। तो फिल्म का नाम है जी महाराजा। विजय सेतुपति की फिल्म है महाराजा। इस साल 2024 विच रिलीज किया गया सी ते एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिस विच जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। इसकी IMDb रेटिंग हैगी है जी 8.3 हैगी है। इस विच विजय सेतुपति ने एक बेटी के पिता का रोल प्ले किया है। इस विच एक कूड़ेदान की कहानी नु दिखाया गया है। विजय सेतुपति ने इस फिल्म नु डायरेक्टर नैटफलिक्स डायरेक्ट नैटफलिक्स से रिलीज किया सीगा ते एक कई हफ्ते तक OTT ते ट्रेंडिंग लिस्ट विच भी बनी रही सी। तो तुसी इस नु जरूर देखो क्योंकि नो डाउट ये बहुत ज्यादा सोहनी फिल्म है।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Mera naam Dr. Kumar hai. Aur yahan kuch aisa hai, जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: Celebrate Mom this Mother's Day with Digicel. Digicel is giving away cash prizes when you send top up or money transfer to My Cash Wallet in the Pacific. Simply send $20 or more Digicel top up or send $300 or more money transfer from any of our money transfer partner websites to your family and friends in the Pacific with a My Cash Wallet. And you enter the draw to win one of 15 $500 cash prizes. Send a $20 top up or $300 money transfer today for your chance to win $500 cash to celebrate Mom this Mother's Day. Terms and conditions apply.
3: Bigger, better deal.
4: Haan ji, munda sadhuan da.

हां जी, देखो फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन से बने हुए हो। इस लिस्ट विच अगला नाम जेड़ा हैगा है वो है जी रत्तासन। साल 2018 विच आई सी फिल्म रत्तासन ते ओटीटी ते वड्डी सफलता हाथ लगी है। इस फिल्म दी एक मलयालम फिल्म है जिस विच एक किलर दी कहानी नु दिखाया गया है जो सूबे विच जवान कुड़ियां नु किडनैप करता है ते फिर उन्हां दा बड़ी बेरहमी दे नाल कतल कर दिंदा है। अपराधी पुलिस नु वार वार चकमा दिंदा है। इस दी आईएमडीबी रेटिंग हैगी है जेड़ी 8.3 हैगी है। रिपोर्ट से बनी है तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस ते भी शानदार परफॉर्मेंस दी सीगी। 20 करोड़ दे बजट विच बड़ी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ दा बिजनेस कीता सी। इस नु हुण तुसी जी प्लस हॉट स्टार ते देख सकते हो।

0: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अ टन वीरे, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: डोंट रिस्क योर लाइफ, टॉक टू अतुल बिफोर यू टॉक टू पुलिस। अज्जी कॉन्टैक्ट करो अतुल जी नो ऑन 0400-234-235, दैट इज 0400-234-235।
3: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आर जे संदेश अलग दे नाल तुसी बने होए हो। हुण आउंदा हैगा जी अगली फिल्म दा नाम कि अगली केड़ी फिल्म हैगी है इस लिस्ट दे विच शुमार, उस बारे भी दसना बहुत ज्यादा जरूर है। मैं दसूंगी भी जरूर, क्यों नहीं दसना है। एक एक करके सारिया फिल्मों बारे जो मैं दस रही हैगी तो इस फिल्म नु किवें पिछे छड़ देना, दस दी इस बारे। ते अगली जेड़ी फिल्म हैगी है उसका नाम है जी हिट दी सेकंड केस। आदि आदि भी शेष दी हिट मिस्ट्री फिल्म हैगी है द हिट दी सेकंड केस। प्राइम वीडियो ते अवेलेबल हैगी है, तुसी उत्थे देख सकते हो। ये फिल्म ओटीटी ही नहीं थिएटर्स से भी हिट रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ना फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से 15 करोड़ के बजट विच इंडिया विच 25.92 मतलब कि 26 करोड़ के करीब की कमाई की है। वर्ल्ड वाइड 42 करोड़ रुपए का बिजनेस किया इस फिल्म ने।
1: गौर सिंह

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

वेलकम बैक जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो दसवानी वन सन वन एम ते जी आर चे संदेश वालक दे नाल तुसीं बने होए हो। इस लिस्ट दे विच हुण तुसीं सोच रहे होंगे कि अगली केड़ी फिल्म हैगी है। अगली फिल्म हैगी है जी थडम। थडम हैगी है जिहड़ी ओह वी एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हैगी है जिस विच जुड़वा भरावां दी कहानी देखण मिलदी है। ए ओटीटी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट ते अवेलेबल हैगी है जे तुहानूं पता होवे इस बारे। तां इसने इसनूं ना 2019 विच रिलीज़ कीता गया सी। खैर हुण इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलैक्शन दे बारे विच गल कीती जावे तां रिपोर्ट दे मुताबिक ना बजट इसका 14 करोड़ सी ती इंडिया नेट कलैक्शन इसकी 19 करोड़ के करीब सी। इना ही नहीं इसका वर्ल्ड वाइड कलैक्शन हैगा जिहड़ा 26 करोड़ के करीब सी। ते अच्छी फिल्म है, वन टाइम वॉच तां जरूर है।

0: शूटर कालों पहले गाने को पहचान मिल गई सी, बच्चे बच्चे पता लग गया सी पंजाब विच कोई शूटर कालों नाम का भी बंदा है।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
5: ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

जी आयनु जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसानी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिराल से बने हुए। अगली फिल्म इस दिल लिस्ट दे विच हैगी है जेड़ी ओ वी बहुत ज्यादा अच्छी हैगी है। ये फिल्म जिन्हां बारे में तुहानूं दस्सी है ना, ये थोड़ियां जिहियां अंडररेटेड रह जांदियां ने, अंडररेटेड हुंदियां ने जरूर, बट ये सोहणियां बहुत हैगियां ने। ते ये जेड़ी अगली फिल्म ओ वी इसे कैटेगरी च आउंदी है, इहदा नाम है इरूल। 2021 विच आई सी फिल्म, तामिल दी हैगी है, तामिल क्राइम थ्रिलर फिल्म हैगी है इरूल। इस विच कमाल दी मिस्ट्री ते थ्रिलर देखण नूं मिलदा है। इस विच फहाद फासिल वर्गे बेहतरीन कलाकार अहम रोल निभा रहे हैगे ने। ते एक हत्या ते आधारित है फिल्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म नैटफ्लिक्स ते अवेलेबल हैगी है। फिल्म नू ओटीटी ते ही रिलीज किया गया सी ते लोकां वल्लों जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलिया।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Mera naam Dr. Kumar hai. Aur yahan kuch aisa hai जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा।

0: मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
1: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
2: तू बेच दा गोलियां, तू बेच दा गोलियां, तू बेच दा, सच्चा गल करिए कृष्ण, तू गोलियां।

0: riding around in Cali.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अ टन वीरे, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks Atan yaar, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Hi, मैं मुख्तार बाशा, owner, manager, Bank of Queensland, Acacia Ridge. बड़ी banks के साथ अक्सर एक परेशानी रहती है. आप कभी भी एक व्यक्ति से दो बार बात कर ही नहीं पाते. But at Bank of Queensland, हम समझते हैं कि आप एक ही व्यक्ति के साथ डील करना पसंद करेंगे, खास करके जब बात हो होम लोन जैसे इम्पोर्टेंट मैटर की. इसलिए एप्लीकेशन से लेकर परचेस और सेटलमेंट तक हर एक स्टेप पर आपके साथ एक ही पर्सन होगा. हम यहाँ इंडियन लोकल कम्युनिटी को उनकी सभी तरह की बैंकिंग जरूरतों के लिए सपोर्ट करने के लिए हैं, और इस काम में हमारे साथ हैं हमारे भरोसेमंद मोबाइल लेंडर्स. हमारे पास बाइलिंगुअल स्पेशलिस्ट्स हैं, और अगर आप हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं तो हम आपके पास आएंगे कहीं भी कभी भी. अगर आप खरीदने या रीफाइनेंस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज ही आइए बैंक ऑफ क्वींसलैंड, अकाशिया रिज, या कॉल करें पंडित ललीन ऑन 0451-538-437. ब्रांच नंबर 333-61-000. इट्स पॉसिबल टू लव अ बैंक, लेट अस प्रूव इट. बैंक ऑफ क्वींसलैंड लिमिटेड, ABN 3200-9656, Australian Credit License 244616. Terms and conditions in branch fees, charges and credit assessment criteria apply.
5: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
6: Hi, this is Amitabh Bachchan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
8: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
9: Hi, this is Salman Khan.
10: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
11: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
12: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
13: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar. और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
14: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
15: Hi, this is Ajay Devgan, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
16: Celebrate Mum this Mother's Day with Digicel. Digicel is giving away cash prizes when you send top up or money transfer to My Cash Wallet in the Pacific. Simply send $20 or more Digicel top up or send $300 or more money transfer from any of our money transfer partner websites to your family and friends in the Pacific with a My Cash Wallet. And you enter the draw to win one of 15 $500 cash prizes. Send a $20 top up or $300 money transfer today for your chance to win $500 cash to celebrate Mum this Mother's Day. Terms and conditions apply.
17: Bigger, better deal.

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजिसेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: एक जंगल में एक हरा अपनी बीवी के साथ रहता था और उनके पास थी सोने का अंडा देने वाली एक नायाब मुर्गी।
3: इस ईद बिग स्क्रीन पर आग लगाने आ रही है पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर जोड़ी फहद मुस्तफा एंड माहिरा खान। देखिए आग लगे बस्ती में।
4: चोरी, डाका, क्या काफी नहीं है ये सब कुछ?
5: ये सब करके भी हाथ में फूटी कौड़ी नहीं है।
4: तो भेज दे, मुझे भेज दे।
5: तेरे लिए तो कोई खुला ना दे।
3: आग लगे बस्ती में ऑन 20th मार्च इन थिएटर्स नियर यू।
2: अब आग लगेगी बस्ती में।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: OMSOG, caring with dignity.
3: एक जंगल में एक खड़ा अपनी बीवी के साथ रहता था और उनके पास थी सोने का अंडा देने वाली एक नायाब मुर्गी।
4: इस ईद बिग स्क्रीन पर आग लगाने आ रही है पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर जोड़ी फहद मुस्तफा एंड माहिरा खान। देखिए आग लगे बस्ती में।
5: चोरी, डाका, क्या काफी नहीं है ये सब कुछ?
6: ये सब करके भी हाथ में फूटी कौड़ी नहीं
5: है। तो मुझे
6: तेरे लिए तो कोई खुला ना दे।
4: आग लगे बस्ती में ऑन 20th March इन थिएटर्स नियर यू।
3: अब आग लगेगी बस्ती में।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: एक जंगल में बकरहाल अपनी बीवी के साथ रहता था और उनके पास थी सोने का अंडा देने वाली एक नायाब मुर्गी।
2: इस ईद बिग स्क्रीन पर आग लगाने आ रही है पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर जोड़ी फहद मुस्तफा एंड माहिरा खान। देखिए आग लगे बस्ती में।
3: चोरी, डाका, क्या काफी नहीं है ये सब कुछ?
4: ये सब करके भी हाथ में फूटी कौड़ी नहीं है।
3: तो भेज दे, मुझे भेज दे।
4: तेरे लिए तो कोई खुला ना दे।
2: आग लगे बस्ती में ऑन 20th मार्च इन थिएटर्स नियर यू।
1: अब आग लगेगी बस्ती में।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.

0: जंगल में बकरहारा अपनी बीवी के साथ रहता था और उनके पास थी सोने का अंडा देने वाली एक नायाब मुर्गी।
1: इस ईद बिग स्क्रीन पर आग लगाने आ रही है पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर जोड़ी फहद मुस्तफा एंड माहिरा खान। देखिए आग लगे बस्ती में।
2: चोरी डाका क्या काफी नहीं है ये सब कुछ?
3: ये सब करके भी हाथ में फूटी कौड़ी नहीं है।
2: तो भेज दे, मुझे भेज दे।
3: तेरे लिए तो कोई खुला ना दे।
1: आग लगे बस्ती में ऑन 20th मार्च इन थिएटर्स नियर यू।
0: अब आग लगेगी बस्ती में।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अ टन वीरे, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: डोंट रिस्क योर लाइफ, टॉक टू अतुल बिफोर यू टॉक टू पुलिस। अज्जी कॉन्टैक्ट करो अतुल जी नो ऑन 0400-234-235, दैट इज 0400-234-235।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: जन्म जन्म।
1: हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर्च निविया के साथ, और आज की इवनिंग की वाइब एकदम मजेदार हो ये सुनिश्चित करने, मेक श्योर करने हम आ गए हैं। और उसी के साथ आपको हैप्पी फ्राइडे भी अगर कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज है फ्राइडे और फाइनली हम वीकेंड के पास पहुंच गए हैं। जी हाँ, मतलब आपने वो सफर तय किया, आपने पूरी मेहनत की, मशक्कत की, और उसके बाद वो दो दिन सुकून के अब आपको मिलने वाले हैं। सो अगेन हैप्पी फ्राइडे। और फ्राइडे को सेलिब्रेट करने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है। आप शामिल हो जाइए बस इस जर्नी में और फिर देखिए क्या क्या कमाल हम यहां पर करने वाले हैं। सो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्दी रिचुअल हम प्रैक्टिस करते हैं जो हमें फिजिकली मेंटली हेल्दी रखने में हेल्प करता है, हमें काम बनाता है, प्रोडक्टिव बनाता है, और सबसे बड़ी बात हमें स्ट्रेस फ्री रखता है, जी हाँ, फोकस्ड बनाता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। सो जल्दी से आ जाइए हमारे साथ लंबी गहरी सांसें लेने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, और क्या बात है। अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है फ्राइडे का दिन। लंबी गहरी सांसों के साथ ये शुरुआत, और अब एक मजेदार सा गाना जो कि अगेन सोने पे सुहागा तो तभी होगा जब हम सबसे पहले ही एक मजेदार सा गाना आपके लिए प्ले करेंगे, और वो तो बनता है। तो आइए यहाँ पे कस्तो मजा जो है मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ सोनू निगम की आवाज में।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अच्छी शुरुआत और अब जरा चलते हैं सीधा मौसम के पास। मौसम के पास अब बादलों में जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आसमान में जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जानते हैं मौसम क्या कह रहा है, टेम्परेचर क्या कह रहा है। 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर आज रहा है और अभी की बात की जाए तो 22.7 डिग्री सेल्सियस के साथ 19.2 डिग्री सेल्सियस तक आप इसे फील कर पा रहे हो। मतलब 22.7 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है बट आपको फील हो रहा है 19.2 डिग्री सेल्सियस। फील कर पा रहे हैं आप वो ठंडक? जी हाँ, वही ठंडक जो धीरे धीरे धीरे धीरे आ गई है और अब वो रहेगी काफी दिन जो, और इसके इससे ज्यादा रहेगी ऑफकोर्स। सो ये टेम्परेचर जो है वो ऐसा ही बना रहेगा बल्कि इससे भी ज्यादा ठंडा होता जाएगा। 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप रात को टेम्परेचर में देख पाएंगे। नो चांसेस ऑफ बारिश बट एयर क्वालिटी की बात की जाए तो वो है एकदम फेयर। जी हाँ, सैटरडे की अगर बात की जाए यानी कि कल की, तो 25 डिग्री सेल्सियस के साथ 20% चांसेस है बारिश होने के। लेकिन फिर से संडे से बारिश मुझे यहां पर दिख रही है दोपहर के बाद। जी हाँ, मतलब सैटरडे को बारिश नहीं है इतनी, लेकिन 20% चांसेस मतलब ना के बराबर है। ऑल दो ये कुछ कुछ इलाकों में हो सकती है, लाइक नॉर्थ ब्रिस्बेन एंड वैसे ही कुछ इलाकों में, बट सैटरडे को बाकी जगह मुझे ठीक नजर आ रहा है। संडे को ऑल दो लेट शार जो है ये दिखा रहा है विद 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 50% चांसेस है बारिश होने के। मंडे को 60 है, ट्यूजडे को 70 है। धीरे धीरे धीरे धीरे बारिश की ओर आप फिर से बढ़ जाओगे। आप बोलोगे कि अभी 2-3 दिन तो हुए थे इस बारिश से छुटकारा मिले हुए हमें, फिर से बारिश आ रही है। वेल, मैंने कहा था कि ये तो खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनको बारिश पसंद है, लेकिन उतनी अच्छी खबर उनके लिए नहीं है जिनको बारिश नहीं पसंद है, क्योंकि आई नो सबको सब कुछ पसंद थोड़ी होता है, राइट? सो या, बारिश से आप कल बिल्कुल नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है जैसे मैंने कहा नॉर्थ ब्रिस्बेन में, बट उसके अलावा सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है। सो जो भी आपको बाहर की मेन आउटिंग्स प्लान करनी है वो सैटरडे को कीजिए, संडे को उतनी आउटिंग्स प्लान मत कीजिएगा क्योंकि जितना मैं देख पा रही हूं बारिश होने के चांसेस हैं। तो सैटरडे को वो सारी बाहर आउटिंग वाले प्लान कर लीजिए और संडे को आप घर पर रह सकते हो, मजे कर सकते हो और बहुत सारी अलग अलग और भी एक्टिविटीज कर सकते हो, राइट? यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही खास है और इसका नाम है तू ही दिसदा। जी हाँ, और ये है भूत बंगला का गाना।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नो आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अ टन वीरे, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: डोंट रिस्क योर लाइफ, टॉक टू अतुल बिफोर यू टॉक टू पुलिस। अज्जी कॉन्टैक्ट करो अतुल जी नो ऑन 0400-234-235, दैट इज 0400-234-235।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818, दैट्स 3804-3818।
4: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
5: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे NER श्रीनिवा के साथ। दोस्तों, इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा आपकी फरमाइशों की तरफ, क्योंकि गपशप और बातें तो हमारे पास बहुत सारी हैं करने के लिए, गाने भी हैं आपके लिए बहुत सारे हमारे पास। लेकिन सबसे पहले अगर हम आपको वो बता दें जिसके थ्रू, जिसके साथ आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो, तो बात बन जाएगी, मतलब कि आपकी फरमाइश है। क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ वन वे रोड की तरह नहीं है, आपका भी इसमें पूरा पूरा जो है वो रहता है पार्ट। और यहां पर आप कैसे हिस्सा ले सकते हो अपनी फरमाइशों के साथ, अपने डेडिकेटेड सॉन्ग्स के साथ, वो हम आपको बताने वाले हैं। सो ध्यान से सुनिए, आपको एक नंबर डायल करना है और वो नंबर के थ्रू आप हमें कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हो और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हो। और अगर आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हो गाना और स्पेशल फील करवाना चाहते हो उन्हें, तो आप वो भी कर सकते हो। सो नंबर क्या है? +9182888-717701। आई रिपीट, +9182888-717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं, हमारी तरफ से थोड़ा सा केसरिया कर दें हम जरा रंग को।

जी हाँ दोस्तों, तो प्रोग्राम हो चुका है शुरू। तो ऑफ कोर्स अजीबो गरीब बातें, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, अजीबो गरीब यूनिक, ये सब तो मैं आपको बताने के लिए पूरी तरह से हमेशा तैयार होती हूँ। तो आइए जरा शुरुआत कर ही लेते हैं। एक किस्सा बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इंटरनेट पर, और अगर कुछ वायरल हो रहा है इंटरनेट पर तो आपको मैं कैसे नहीं बताऊंगी, ऑफकोर्स आपको पता चलेगा। अहमदाबाद, जी हाँ, ये किस्सा है भारत के गुजरात का अहमदाबाद का, जहां पर एक शॉकिंग केस जो है वो सरफेस हुआ है, जो सामने आया है, जहां पर पेरेंट्स ने अपनी 16 साल की लड़की के लिए बाउंसर्स हायर किए हैं। जी हाँ, बाउंसर्स हायर किए हैं। अब आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, मतलब इसमें ऐसा क्या यूनिक है, मतलब ठीक है अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं और उनको सिक्योरिटी रीजंस के लिए बाउंसर्स चाहिए होंगे तो वो ऑफकोर्स वो बाउंसर्स हायर कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ यूनिक तो है नहीं। देर आर मेनी पीपल जो अपने बच्चों के लिए बाउंसर्स हायर करते हैं, मतलब इसमें कुछ अजीबो गरीब और यूनिक तो हमें नहीं दिख रहा। वेल, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए अपनी चीजों को और ये बात को, क्योंकि उसके बाद फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या अब आपको ये यूनिक लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये 16 साल की लड़की के लिए उसके फैमिली ने अहमदाबाद में बाउंसर्स हायर किए हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो चाहते हैं वो बाउंसर्स उसे प्रोटेक्ट करें, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी आदत है बहुत ज्यादा खराब, वो बहुत ही ज्यादा फोन पे लगे रहने की आदत, स्मार्टफोन एडिक्शन है उस लड़की को बहुत ज्यादा, और वो स्मार्टफोन एडिक्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसके लिए बाउंसर्स हायर करने पड़े हैं कि वो बाउंसर्स उसे उसके फोन से दूर रख सके। जी हाँ, आप लोग बोलोगे हैं What are you talking about, Nivya? Well, जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, जब मैं इसके बारे में सुन रही थी तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, मतलब इतनी खतरनाक स्मार्टफोन एडिक्शन कि फैमिली को लिटरली बाउंसर्स को हायर करना पड़ गया ताकि वो उसको उस स्मार्टफोन से, उसके स्मार्टफोन से दूर रख सके। जी हाँ, अब आपको मैं बता दूं कि सिचुएशन जो है वो इतनी एस्केलेट हो गई है कि ये पॉइंट पर वो आ गया है कि अगर उसकी फैमिली वाले उससे वो फोन छीनते थे या फोन लेने की कोशिश करते थे, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती थी, वो चीजें तोड़ना फोड़ना शुरू कर देती थी, वो चीजें फेंकना शुरू कर देती थी अपने घर वालों पर, इतनी खतरनाक स्मार्टफोन एडिक्शन। जी, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल एडिक्शन जो कि हम लोगों को भी है, आई मीन लेट्स बी रियल, या वी हैव एडिक्शन काइंड ऑफ, बट यहां पर सिचुएशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों पर, अपनी फैमिली पर, मतलब घर की चीजें तोड़ फोड़ना, उन पर फेंकना शुरू कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, तो उन्होंने उसको बाउंसर्स हायर कर दिया, और अब वो बाउंसर्स उसको हमेशा चेक में रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं वो एक बात है, लेकिन उसका स्मार्टफोन अगर उन्हें दिख जाए तो वो स्मार्टफोन को लेने की पूरी कोशिश करते हैं। आई मीन लेट्स बी रियल, अब फैमिली वालों के साथ तो फिर भी थोड़ी सी जबरदस्ती चल सकती है, बाउंसर्स के साथ करेंगे तो क्या होगा, आई कांट इमेजिन। जी हाँ, और पेरेंट्स ने उसके स्मार्टफोन से बचाने के लिए उसको बाउंसर जाहिर कर दिए। जी हाँ, आप लोग बोलोगे निव्या शर्मा अजीबो गरीब बात तो है, पहले हमें नहीं लग रही थी लेकिन अब हमें जरूर लग रही है। आप मुझे बताइए क्या आपने भी किसी को देखा जिसको बहुत ही खतरनाक स्मार्टफोन एडिक्शन हो, आई मीन वी हैव दीज काइंड ऑफ केसेस राइट नाउ हमारे बीच में। ऑफकोर्स अगर आप भी किसी को जानते हो तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani
11: से. To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
13: Celebrate Mum this Mother's Day with Digicel. Digicel is giving away cash prizes when you send top up or money transfer to My Cash Wallet in the Pacific. Simply send $20 or more Digicel top up or send $300 or more money transfer from any of our money transfer partner websites to your family and friends in the Pacific with a My Cash Wallet. And you enter the draw to win one of 15 $500 cash prizes. Send a $20 top up or $300 money transfer today for your chance to win $500 cash to celebrate Mum this Mother's Day. Terms and conditions
14: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर जिनीविया के साथ. सो दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं उस कारपेट के बारे में जिसके बारे में सब बात करते हैं, क्योंकि उस पर चलना अपने आप में बहुत ही बड़े सम्मान की तरह माना जाता है. आप लोग बोलोगे कि कौन से कारपेट की बात हो रही है निविया शर्मा, इज इट अकेडमी कार्पेट, आई मीन ऑस्कर्स कार्पेट, ग्रैमी कार्पेट, कौन सा? वेल नॉट ग्रैमी कार्पेट, नॉट ऑस्कर कार्पेट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मेट गाला कार्पेट. जी हाँ, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपसे कितनी सारी बात की, क्योंकि 4 मई को मेट गाला अभी हुआ और उसमें दुनिया भर के सेलिब्रिटीज ने पार्टिसिपेट किया. इंडिया के बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने पार्टिसिपेट किया, डिजाइनर से लेके डायरेक्टर से लेके रॉयल्टीज ने सबने पार्टिसिपेट किया. बड़े बड़े हैवी हैवी गहने, मतलब ऐसे ऐसे ज्वेल्स उन्होंने अपनी कलेक्शन से बाहर निकाले कि लोग भी देख रहे थे, रियली मतलब इज दैट इवन पॉसिबल, इतना बड़ा जैम भी हो सकता है? हो सकता है, सब कुछ हो सकता है. इंडिया यानी कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया थी, उसको इतना लूटा गया. एक आए वो लूट के गए, दूसरे आए वो लूट के गए, तीसरे आए वो लूट के गए, लेकिन फिर भी इतना लूटने के बाद भी भारत जो है वो ग्लोबल स्टेज पे खड़ा. सो आई मीन ये तो कमांडेबल है. जी हाँ, सो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज जो है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और वो इम्पॉर्टेंट चीज है उस कार्पेट से रिलेटेड. मैं जब भी बात करती हूँ कि बड़े बड़े स्टाइलिस्ट, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स और फैशन हाउसेस जो है वो इंडिया से इंस्पिरेशन लेते हैं, इंडिया की आर्टिशन से इंस्पिरेशन लेते हैं, वो गलत नहीं होगा. जी हाँ, यहां पर मतलब कोल्हापुरी चप्पल से लेके, हमारी चाय से लेके, हमारे कपड़ों से लेके, हर चीज से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है. और यहां पर मेट गाला का जो कार्पेट है वो भी इंडियन आर्टिशंस ने बनाया है. जी हाँ, सो मेट गाला 2026 का जो आइकॉनिक कार्पेट है, जिस पर वो सभी के सभी ग्लोबल सेलिब्रिटीज जो है वो चल रहे थे वो इंडिया में बना है। सो ये केरला बेस्ड ब्रांड नाइट का क्रिएट किया हुआ हैंड वुवन बेस्ड कार्पेट है जो कि फीचर किया गया था मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में न्यूयॉर्क में। जी हाँ, अब आप लोगों को नहीं पता है कि ये क्या जगह है। वेल, ये वही म्यूजियम है जहां पर मेट गाला हर साल होता है। सो अगेन मैं आपको बता दूं कि इसे क्राफ्ट किया गया था नेचुरल सस्टेनेबल फाइबर से और इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे 500 से ज्यादा इंडियन आर्टिस्ट जिन्होंने लिटरली 90 दिन तक काम किया था इस कार्पेट को बनाने के लिए। जी हाँ, सो फ्रॉम केरला टू ग्लोबल स्पॉटलाइट, इंडियन क्राफ्टमैनशिप जो है वो अगेन जो है वो पार्ट बन चुकी है बड़े बड़े यू नो इवेंट्स का। और हम यहाँ पर बोलते हैं कि क्या कर सकते हैं, मतलब मैं तो कहती हूँ कि इंडियन लोग ना कुछ भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को चला सकते हैं, अच्छे फैशन हाउसेस को इंस्पायर कर सकते हैं, और तो और मतलब जिस पे वो चल रहे हैं वैसे कार्पेट भी बना सकते हैं। मतलब क्या कहूं मैं, क्या कहूं, मुझे हमेशा जो है वो प्राउड फील होता है व्हेनेवर जब भी मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। सो यार, वो कार्पेट जिसपे मेट गाला सेलिब्रिटीज चल रहे थे वो भी इंडिया में बना है, इजंट इट प्राउड मोमेंट। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, और वो इम्पोर्टेंट चीज के बारे में हम तभी बात करते हैं जब फ्राइडे आता है, और उसके पीछे रीजन ये है कि फ्राइडे अपने साथ लेकर आता है बॉलीवुड रिलीजेस। जी हाँ, इम्पोर्टेंट बात वही है, बॉलीवुड रिलीजेस, नई रिलीज है कोई या नहीं है उसी के बारे में बात होगी, सारी चीजों के बारे में बात जो है हम करने वाले हैं, जो भी कुछ नया रिलीज हो रहा है और या इन सारी चीजों के बारे में बात होने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक मूवी जो लग गई है थिएटर्स में और जिसका इंतजार है मेरे कुछ लिसनर्स को भी, जी हाँ, और उसका नाम है दादी की शादी। सो मूवी हो चुकी है रिलीज और अब आप इसे देख पाएंगे। जी हाँ, दादी की शादी जो है वो एक फनी मूवी है, कॉमेडी ड्रामा फैमिली मूवी है, और इसमें आपको नीतू सिंह दादी के रोल में मिलने वाली है। और दादी की शादी, आपको समझ आ गया होगा कि क्या माजरा क्या है, दादी शादी करने वाली है। और अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा ना तो जरूर देखिए, फिर आपको माजरा अच्छे से समझ आ जाएगा। सो नीतू सिंह दादी का कैरेक्टर प्ले करने वाली है, लेकिन उन्हीं के साथ कपिल शर्मा आपको इसमें नजर आने वाले हैं, रिद्धिमा कपूर सहानी आपको इसमें नजर आने वाली है, और सादिया खतीब भी इसमें आपको नजर आने वाली है। सो ये मूवी जो है वो रिलीज हो चुकी है, वॉच इट एंड लेट मी नो कैसी है, बट ऑफकोर्स इट्स अ गुड वॉच। एंड जैसे मैंने कहा कि मेरे लिसनर्स को काफी इंतजार था इसका। इसके साथ भूत बंगला लगी हुई है थिएटर्स में, वो भी आप देख सकते हैं, विच इज हॉरर कॉमेडी, मतलब कॉमेडी है लेकिन साथ में डरावनी भी है, और आपको डर भी लगेगा, आपको हंसी भी आएगी, वैसा ही कुछ आपको लगने वाला है। इसी के साथ राजा शिवाजी, एक हिस्टोरिकल मूवी अबाउट अ लेजेंडरी हीरो, जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज, रितेश देशमुख और उनके साथ बहुत ही जबरदस्त कास्ट आपको नजर आने वाली है। ऑल्दो रितेश देशमुख आपको उस कैरेक्टर में पसंद आने वाले हैं या नहीं, वो आप खुद ही डिसाइड करेंगे। इसके अलावा भी है कुछ मूवीज जो आप देख पाओगे, जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूं, लेकिन पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक और जबरदस्त सा गाना।

0: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
1: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
5: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ और बात हो रही है उन मूवीज के बारे में जो आप देख सकते हैं इस वीकेंड अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। उसमें कुछ नई रिलीज हैं, कुछ पुरानी हैं, कुछ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कुछ नॉर्मल सा काम कर रही हैं। जी हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके लिए दादी की शादी कैन बी अ गुड ऑप्शन, आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हो और आजकल बहुत कम ऐसी मूवी है जो आप लिटरली अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। सो इसे आप फैमिली के साथ जाकर देख सकते हो और साथ में मैंने आपको बताया कि राजा शिवाजी कैन ऑल्सो बी अ फैमिली मूवी। जी हाँ, राजा शिवाजी इज अ हिस्टोरिक मूवी अबाउट अ ग्रेट लेजेंडरी हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज और आप इसे देख सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। इसी के साथ मैंने आपको भूत बंगला के लिए भी कहा क्योंकि भूत बंगला भी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हॉरर कॉमेडी है अक्षय कुमार और वामिका गाबी की, लेकिन आप इसे देख सकते हैं अपनी फैमिली के साथ बिकॉज इट इज अ हॉरर कॉमेडी एंड इट इज अ फैमिली मूवी। इसी के साथ एक दिन कैन बी ऑल्सो योर ऑप्शन, बट ऑफकोर्स ये बहुत ही कम सिनेमाघरों में अब रह गई है, ऑलमोस्ट उतर ही गई है ये थिएटर से, लेकिन इसे बनाया है आमिर खान प्रोडक्शन हाउस ने और ऐसा कहा जा रहा है कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक है, विच आई कांट अग्री विद दैट मच, बट या इट कैन ऑल्सो बी अ वन टाइम वॉच बिकॉज जुनैद खान और साई पल्लवी आपको इसमें नजर आने वाले हैं और धुरंधर 2 भी लगी हुई है अभी भी थिएटर्स में, सो आप वो भी देख सकते हैं। सो ये तो हो गई कुछ बॉलीवुड रिलीजेस, जी हाँ बॉलीवुड की मूवीज, और इसी के साथ एक ऐसी मूवी जिसके बारे में काफी सारी बात हो रही थी, जी हाँ काफी सारी बात हो रही थी क्योंकि जब इसका ट्रेलर आया, जब इसके गाने आए तो सब लोग इसके बारे में बात कर रहे थे एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कृष्णा अवतारम। सो अगर आपको लॉर्ड कृष्णा की कहानी उनकी रानियों के साथ देखनी है, सत्यभामा जी के साथ देखनी है और आपको उस स्टोरी के बारे में नहीं पता है, देन कृष्णा अवतारम कैन बी अ गुड ऑप्शन टू। अगेन, यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली और आपको बिल्कुल भी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या आप उसे अपनी फैमिली के साथ देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। इसी के साथ यहां पर आगे की ओर बढ़ते हैं और जो आपको मैं हॉलीवुड रिलीजेज है उनके बारे में भी कुछ कुछ बता दूं। जी हाँ, मॉर्टल कॉम्बैट सेकंड जो है वो थिएटर्स में लगी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। द डेविल वेयर्स प्राडा 2 थिएटर्स में लगी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। एंड द डेविल वेयर्स प्राडा 2 जो है वो लेजेंडरी मूवी द डेविल वेयर्स प्राडा का सेकंड पार्ट है। बहुत वक्त लग गया इसे आने में, लेकिन अभी भी मेरिल स्ट्रीप और एन हाथवे की उस जोड़ी को लोगों ने याद रखा है एंड दे लव हर, और यहाँ भी उनको बहुत प्यार जो है वो दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट हेल मैरी कैन ऑल्सो बी अ ऑप्शन, इट्स अ साईफाई मूवी और रायन गॉसलिंग की बड़ी और बहुत ज्यादा भारी भरकम कमाई करने वाली मूवीज में से एक है ये, और इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। सो अगेन इट कैन ऑल्सो बी योर ऑप्शन इफ यू आर इनटू साईफाई जॉनर। जी हाँ, बट जो सबसे खतरनाक रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, जी हाँ, अगर आप हॉरर पसंद करते हो, जी हाँ, डरावनी मूवी पसंद करते हो, मतलब बोन्स तक चिल फील हो ऐसी डरावनी मूवीज, तो ली कॉनिंस द ममी कैन बी ऑप्शन। ऑफकोर्स इसका फुल रिव्यू भी मैं करने वाली हूं और आज ही मैं करूंगी, ताकि अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आप इसे ट्राई कर सको। जी हाँ, ये ना सिर्फ डरावनी है बट काफी क्रीपी भी है मूवी, लेकिन अगेन इफ इट इज योर जॉनर देन यू आर गोना लव इट, क्योंकि बहुत कम ऐसी मूवीज हैं जो सच में आपको ऐसे डरा पाए। सो या, ये कुछ मूवीज हैं जो आप देख सकते हो हॉलीवुड एंड बॉलीवुड की तरफ से। अगेन बहुत सारे ऑप्शंस, और ये सारे ऑप्शंस में से अगर आपने कुछ देख भी लिए हैं तो आप बस आगे और जो ऑप्शंस हैं उनको ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसे लगी। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।
6: मेरी

जी दोस्तों, इसी के साथ कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर मैंने एक मीम देखा जो कि मीम कम बल्कि पते की बात ज्यादा थी। और एक ऐसा सवाल जो कि सच में हमें पूछना चाहिए खुद से और अपने आजू बाजू वाले लोगों के साथ। जी हाँ, तो उसमें कुछ लिखा हुआ था कि व्हाई डज एवरीवन फोर्स इंट्रोवर्ट्स टू लीव देयर कंफर्ट जोन बट नो वन फोर्सेस एक्सट्रोवर्ट्स टू शट अप फॉर अ व्हाइल। Why? जी हाँ, अगर आपने नहीं सुना है फिर से सुनिए। Why does everyone force introverts to leave their comfort zone, but no one forces extroverts to shut up for a while? Why? And I was like, yeah, मतलब बात में दम है। हम हमेशा, हमें कोई इंट्रोवर्ट दिख जाता है तो हम बोलते हैं कितना शर्माते हो आप, है ना, आप बात नहीं करते, आप इतना शर्माते क्यों, और ऐसे ऐसे करके। अरे नहीं पसंद।

पसंद है उसे बात करना, अरे वो इंट्रोवर्ट है, उसे रहने दीजिए वैसे. लेकिन हम कभी भी एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, बहुत ज्यादा चटर पटर करते हैं, आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा ये चटर पटर तो हमें तुम ही लग रही हो. हाँ ठीक है, आई मीन आई एम काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट, बट मैं यहाँ पर एग्री करूंगी इंट्रोवर्ट्स की इस बात से कि बेचारे इंट्रोवर्ट्स को ही क्यों हमेशा छेड़ा जाता है, उन्हीं को ऐसा छेड़ा जाता है कि ओके कितना शाय है ना, कितनी शाय है ना, बात नहीं करती क्या, अरे थोड़ा तो बात कर लो, अरे नहीं करनी उसको बात. लेकिन आप इंट्रोवर्ट्स को ही छेड़ते हो क्योंकि आप उन्हें ही छेड़ सकते हो, आप किसी भी एक्सट्रोवर्ट से पंगा नहीं ले सकते हो क्योंकि एक्सट्रोवर्ट को अगर आप चुप रहने के लिए बोलोगे तो वो सामने से आपकी धुलाई नहीं कर देगा. जी हाँ, तो मैं कहती हूं कि इंट्रोवर्ट्स को छेड़ना बंद करो और एक्स्ट्रोवर्ट्स पर हमला बोल दो, क्योंकि अगर वो चुप नहीं करेंगे तो इंट्रोवर्ट्स बेचारे परेशान हो जाएंगे. सो एक्स्ट्रोवर्ट्स को भी थोड़ा टारगेट करना चाहिए, सिर्फ इंट्रोवर्ट्स को नहीं करना चाहिए. दैट्स व्हाट आई वांट टू से, और ये जनहित में जारी मैं ये सिचुएशन कहूंगी क्योंकि आई फील फॉर द इंट्रोवर्ट्स नाउ. Literally, although I am extrovert, kind of. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी दोस्तों, और इसी के साथ यहाँ पर हम खबरों की तरफ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है, और वो काम है मेरे लिसनर से रिलेटेड, उनकी फरमाइशों से रिलेटेड। सो मैं क्या करने वाली हूँ, वेल मैं यहाँ पर एक फरमाइशी गीत प्ले करने वाली हूँ, और ये खूबसूरत सा गाना फरमाइश किया गया है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से। जी हाँ, गाना जो उन्होंने फरमाइश की है उसका नाम है आजा रे परदेसी, और मधुमती मूवी का ये गाना है, और ये खूबसूरत है गाना, लता जी का गाया हुआ, सो ऑफ कोर्स खूबसूरत तो होगा ही। थैंक यू सो मच अमला जी, हमेशा की तरह प्यारी प्यारी खूबसूरत फरमाइशें करने के लिए, और हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

0: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया में, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तेल से, क्योंकि आपको पता है जब से ईरान अमेरिका इजराइल का विवाद चला है तब से तेल ही सबसे ज्यादा रुष्ट हमें नजर आ रहा है हमसे। जी हाँ, मतलब इसकी कीमतों में उछाल आता ही जा रहा है और फिर से ये हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच बड़ी तनातनी से एक बार फिर एशिया में शुक्रवार सुबह कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट की कीमत 2.6% बढ़कर $102.70 प्रति बैरल हो गई, जबकि अमेरिका में कारोबार होने वाला क्रूड 2.3% बढ़कर $57 प्रति बैरल पहुंच गया। जी हाँ, दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गोलीबारी हुई थी, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने कहा था कि उसने ईरान की ओर से बिना वजह किए गए हमलों को रोकने के लिए जवाबी हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जिन अमेरिकी जहाजों पर हमला हुआ वे 3 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर थे जो हॉर्मुज से बिना नुकसान के निकल गए। जवाबी हमले में ईरान की कई छोटी नावें पूरी तरह तबाह कर दी गई और अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने वाली मिसाइलें आसानी से गिरा दी गई। दूसरी ओर ईरान की सेना ने अमेरिका पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच बीते कुछ हफ्तों से युद्ध विराम चल रहा था, लेकिन इन हमलों के बाद दोनों देशों के बीच एक बार फिर युद्ध गहराने की आशंका बढ़ गई है, और ये अगर होता है तो बहुत ही गलत ऐसा माना जाएगा।
1: At its core, Windows amplifies human ingenuity. It's made to work in rhythm with...

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
5: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
6: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
5: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
6: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
5: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
6: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
7: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006644355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
8: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
9: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, इसी के साथ UAE के रक्षा मंत्रालय का दावा, ईरान ने हमला किया, आम लोगों से की ये अपील। जी हाँ, UAE ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान ने उस पर हमला किया है। UAE के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों से निपट रहा है। रक्षा मंत्रालय ने एक्स पोस्ट पर जानकारी देते हुए कहा कि यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को रोक रहा है। इस वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में आवाजें सुनाई दे रही हैं। रक्षा मंत्रालय ने जनता से अपील की है कि शांत रहें और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी किए गए निर्देशों का पालन करें। रक्षा मंत्रालय ने आम लोगों से कहा है कि गिरे हुए टुकड़ों या मलबे के पास न जाएं, उन्हें न छुएं और उनकी तस्वीरें न लें। सफल एयर इंटरसेप्शन के बाद गिरे हुए हिस्सों की जांच संबंधित अधिकारी करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले यूएई के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि 4 मई को उस पर ईरान की ओर से कई मिसाइलें दागी गईं, जिन्हें उनके डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया था। इस दौरान 3 भारतीय भी घायल हुए थे।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं ईरान की तरफ। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट का मामला तभी सुलझेगा जब। जब क्या? ईरान ने कहा कि युद्ध खत्म होने और अमेरिकी नाकाबंदी हटाने से ही हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी समस्या सुलझ सकती है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में एक अमेरिकी मसौदे का भी विरोध किया। ईरानी राजदूत अमीर सईद इरवानी ने कहा कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नाम का एक गलत और राजनीतिक मकसद वाला मसौदा पेश कर रहा है। दरअसल बहरीन के संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि ने इस मसौदे के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि यह मसौदा ईरान से मांग करता है कि वह तुरंत सभी हमले रोके और व्यापारिक जहाजों को धमकी देना बंद करे। मसौदे में माइंस बिछाने और गैरकानूनी शुल्क वसूली के मुद्दे भी शामिल हैं। इसमें इन्हें अस्वीकार्य बताया गया है। इस पर इरवानी ने कहा कि ईरान देशों से अपील करता है कि वे दबाव में आकर नहीं बल्कि तर्क, न्याय और सिद्धांतों के आधार पर काम करें। जी हाँ, और ये उन्होंने कहा है करने के लिए। इसी के साथ इस पर इरवानी ने कहा कि ईरान जो है अपील करता है, और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखकर इसे एक तरफा और भड़काऊ मसौदा बताया है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ यहाँ पर अब जरा बात कर लेते हैं ईरान की फिर से, क्योंकि उसके लिए अमेरिका के लिए उसने कुछ कहा है। सो अमेरिकी हमले के बाद ईरान की तीखी प्रतिक्रिया आई है। शेर के दांत देकर ये मत समझो कि वो मुस्कुरा रहा है। जी हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है हम थोड़ा कॉमेडी वाली सेशन में जा रहे हैं। और ऑफकोर्स आई एम गोना रोस्ट डोनाल्ड ट्रंप अगेन, बिकॉज ऑफकोर्स उसके बिना हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता है, एंड वी लव डूइंग दैट। और जो हमें पसंद है वो हम करके रहेंगे। जी हाँ, सो अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान में सैनिट ठिकानों पर बमबारी की है। इसके बाद ईरान के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने अपने एक्स हैंडल पर एक अरबी कहावत पोस्ट की है, जिसमें इशारों इशारों में अमेरिका को चेतावनी दी गई। उन्होंने लिखा, अगर तुम शेर के बाहर निकले हुए दांत देखो तो ये मत समझो कि शेर मुस्कुरा रहा है। ईरान ने खुद को शेर कहा है, सबसे पहली बात तो ये है। यहाँ पर जरा मेक श्योर कर दे कि ईरान अमेरिका को नहीं, खुद को शेर बता रहा है। ईरानी संसद और राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर लिखा कि बार बार वही गलती करने से अलग जवाब नहीं मिलेगा, बस और सख्त मिलेगा। ईरान के नए समुद्री नियम का सम्मान करें, नहीं तो यहां से कल्टी मार ले। जी हाँ, दैट्स व्हाट ईरान वांट्स टू से बेसिकली। चलिए आपको एक और चीज बताते हैं, क्योंकि अमेरिका की मुश्किलात जो है वो बढ़ती ही जा रही है। सो अमेरिका जो है, जिसके पीछे वैसे ही बहुत सारी कंट्रीज पड़ी हुई हैं, क्योंकि अमेरिका ने सबका कवाड़ा कर दिया है। सो अमेरिका ने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि कैसे वो एक फ्रीडम जो है वो देने वाला है, और ये फ्रीडम जो है उन्होंने एक रेवोल्यूशन की तरह उन्होंने इसे लिया था, जहां पर वो जितने भी जहाज फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उनको वो बाहर निकालने का काम करेगा। उन्होंने कहा था कि मैं बड़ा ही ह्यूमैनिटेरियन काम करने वाला हूं, मैं फंसे हुए जहाजों को बाहर निकालूंगा, और ये हम अपनी नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री की मदद से करेंगे। ऑफकोर्स ईरान ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, और अगर कोई भी ऐसा करने की कोशिश करता है तो उस पर हम हमला करेंगे। सो ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन यहां पर सऊदी अरेबिया ने सामने से कन्नी काट ली है। जी हाँ, सऊदी अरेबिया, जो कि अच्छा एलाय माना गया है अमेरिका का हमेशा से, वो भी सर पकड़ के रो रहा होगा कि किसका साथ दे दिया, क्या ये बंदा, मतलब क्या क्या क्या क्या है ये बेवकूफ मूर्ख इंसान। जी हाँ, सो सऊदी अरेबिया ने कह दिया है कि वो ये फ्रीडम वाले रेवोल्यूशन में, और जो भी ये ह्यूमैनिटेरियन काम करना की कोशिश कर रहा है, आई मीन अकॉर्डिंग टू अमेरिका इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन वर्क, बट असल में ह्यूमैनिटेरियन और अमेरिका दोनों साथ में जाते ही नहीं है, दे डोंट गो इन सेम सेंटेंस। सो सऊदी अरेबिया ने कह दिया कि ओके, हमें तो इस बारे में खबर भी नहीं थी, हमसे कुछ पूछा नहीं जाता, हमको कुछ बताया नहीं जाता, यू नो वॉट, हम इसमें इसके साथ है ही नहीं, हम अमेरिका में इसके साथ है ही नहीं। और तो और, एक और बात सऊदी अरेबिया ने कह दी जो कि बहुत ही बड़ा झटका है अमेरिका के लिए एंड मिस्टर ट्रंप के लिए, वो ये है कि सऊदी अरेबिया ने कह दिया कि अब से अमेरिका हमारे एयर बेसिस यूज नहीं करेगा, खबरदार अगर तुमने ऐसी कोशिश भी की। एलोजी, डोनाल्ड ट्रंप काम बनाते कम है, काम बिगाड़ते ज्यादा है, मतलब जो थोड़े बहुत एलाइज हैं उनको भी उन्होंने कर दिया है पार। और ऐसे में सऊदी अरेबिया ने सीधे सीधे बोल दिया कि डोंट यू डेयर, मतलब हमें बताते कुछ हो नहीं, हमारे से पूछते कुछ हो नहीं, कहीं भी चल के अपना मुंह उठा के हमला कर देते हो, कहीं भी कुछ कर देते हो, कहीं भी नया रेवोल्यूशन घोषित कर देते हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। और आई मीन ये सब उसने एग्जैक्टली नहीं बोला है, पर ये मैं अपनी भाषा में बोल रही हूँ, बिकॉज आपको तो पता ही है अमेरिका को रोस्ट करने में, आई मीन नॉट द पीपल बट मिस्टर ट्रंप को रोस्ट करने में हमें बहुत मजा आता है। और टू बी वेरी फ्रैंक, वो बहुत ही सीधी लैंग्वेज का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में करना पड़ता है, लेकिन अगर सच में लोगों को वो चीजें बोलनी पड़े तो वो इतनी सीधी लैंग्वेज थोड़ी यूज करेंगे, वो तो वही यूज करेंगे जो मैं यूज कर रही हूँ। जी हाँ, सो यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने झटका दे दिया है। यूएई तो वैसे ही बेचारा सह रहा है, यूएई के साथ तो सबसे ज्यादा गड़बड़ हुई है, ईरान ने यूएई को सबसे ज्यादा निशाना यहाँ पर बनाया है। बट लेट्स होप यूएई इसमें बचने की कोशिश अच्छे से कर पाए, और वो बच पाए, क्योंकि यहाँ पर ईरान बहुत ज्यादा गलत है, मतलब यूएई के पीछे पड़ना बहुत गलत है, क्योंकि अब यूएस को उसके एयरबेसिस यूज करने भी नहीं दे रहा यूएई। सो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना तो बेड़ा गड़क कर ही दिया है, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज का भी कर दिया, मतलब सऊदी कंट्रीज का बेड़ा गड़क कर दिया है, मतलब वही कंट्रीज जो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से दोस्ती में नहीं रहती थी लेकिन दुश्मन भी नहीं थी, अब वो एक दूसरे पर हमला कर रही है। ट्रंप, आपको नोबेल पीस प्राइज नहीं, आपको नोबेल क्या बोलना चाहिए, मैं आप पर छोड़ती हूं, कौन सा प्राइज देना चाहिए उन्हें। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा खास है, और इसका नाम है डांस बसंती, और ये साहो का गाना है, जो कि काफी पॉपुलर मूवी हुई थी लेकिन उतनी ज्यादा हिट नहीं हो पाई थी। एंड अगेन इसको सुनने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि और क्या चल रहा है दुनिया में, खासकर हंता वायरस के फ्रंट पर।

0: डांस बसंती।
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब जरा बात करते हैं हंटा वायरस के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा था कि 3 डेथ्स 4 कंफर्म्ड केसेस के बाद एक केस और बढ़ गया था जिसने 5 उस काउंट को बना दिया था। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट क्रूज शिप जिसपे इसका आउटब्रेक हुआ था। लेकिन अब फाइनली और ऑफिशियली यूरोप पहुंच गया है। ज्यूरिच में पहला केस जो है वो ओवरनाइट मिला है और ये फ्रांस में दूसरा केस बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सो हंटा वायरस जो है वो अब सिर्फ क्रूज तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि यहां पर वो आगे भी बढ़ रहा है। हंटा वायरस का कोई इलाज नहीं है, हंटा वायरस के सिर्फ प्रिकॉशंस हैं। और ऐसे में जो कि ये रोडेंट्स यानी कि रैट से फैलता था, इसका एक नया वेरिएंट है जिसने अपने आप को म्यूटेट कर लिया है और अब ये इंसानों से इंसानों के बीच फैल रहा है। दोस्तों हंटा वायरस के बारे में WHO ने जो भी गाइडलाइंस दी हैं वो यही हैं कि ऑफकोर्स जो आपके आजू बाजू है उसको जो है आप थोड़ा सा देखिए, किसी को सिम्टम्स जो हैं वो अगर आपको नजर आते हैं तो उनको डॉक्टर को चेक करवाने के लिए कहे। अब आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा कल ही तुमने कहा था कि वो हमसे काफी दूर है, एक क्रूज शिप पे है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो जो डच कपल था, जी हाँ, जो कि उस क्रूज शिप पे बैठा था, वो जहां से आया था वहां पर क्रूज शिप में आने से पहले उसने फ्लाइट ली थी और उसी चीज को चेक करने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर्स थे जिनके साथ उसका कांटेक्ट हुआ था वहां पर तो नहीं किसी को हंटा वायरस हुआ है। अगेन, जैसे मैंने कहा कि हमसे बहुत दूर है, लेकिन फिर भी 2 से 3 ऑस्ट्रेलियन लोग इसमें कुछ पैसेंजर्स उस क्रूज पे भी हैं जिनको अगेन अभी धीरे धीरे स्पेन की तरफ ले जाया जा रहा है क्योंकि स्पेन ने कर दिया है उनको अग्री। उन्होंने कह दिया है कि आप हमारे एक आइलैंड के पास से लेके जा सकते हो, ऑफ कोर्स फॉर द सप्लाईज ओनली, आपको डॉक नहीं किया जाने देगा। लेकिन वहां पर जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने कहा है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी और लोकल्स को खतरा इसके हो सकता है। लेकिन क्या उन लोगों से पूछा गया था कि क्या उस शिप को वहां पर डॉक किया जा सके या नहीं किया जा सके। सो अगेन, उस शिप को डॉक करने के लिए कोई भी कंट्री तैयार नहीं थी, मैंने आपको कल ही बताया था। धीरे धीरे केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं और बढ़ने भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या ये पेंडेमिक है या नहीं है उसके बारे में WHO ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। ऑल्दो इसका 40% फेटेलिटी रेट है जो कि काफी खतरनाक है। देयर इज नो वैक्सीन, नो दवाई, जस्ट लाइक कोविड। यहां पर उसके लिए कुछ कुछ चीजें जो है वो की जा सकती है, फटीग से लेके, कोल्ड से लेके, कुछ ऐसी ऐसी चीजें, वॉमिटिंग से लेके, नोजिया से लेके, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो इस हंटा वायरस के हैं। अगेन, जैसे मैं कह रही हूं कि हमें एग्जैक्टली डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहने की डेफिनेटली जरूरत है, इवन इफ इट्स नॉट हियर, बट स्टिल सतर्कता इज वे वे वे मोर इंपॉर्टेंट। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ जो गाना मैं अभी प्ले करने वाली हूँ वो गाना हमारी तरफ से नहीं है बल्कि एक फरमाइशी गीत है। जी हाँ, और ये फरमाइशी गीत आया है हमारे बहुत ही खास लिसनर अंकित जी की तरफ से। जी हाँ, अंकित जी की तरफ से ये गाना फरमाइश किया गया है और ये गाना बहुत ही खास है। गाने का नाम है दिल का क्या और मेट्रो इन दिनों मूवी का ये गाना है जो अभी कुछ वक्त पहले, कुछ महीने पहले जो है वो आई थी। अभी इस मूवी को आए हुए 10 महीने तक जो है वो हो गए हैं, लेकिन मेट्रो इन दिनों जो है वो एक बड़ा ही प्यारा प्रोजेक्ट है अनुराग बसु का और इसमें बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी स्टार कास्ट आपको नजर आई थी। थैंक यू सो मच अंकित, हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशों के लिए। और ये रहा आपका गाना बिल्कुल देर ना करते हुए।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आज जेनिविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर मजे करना चाहते हो तो अच्छे से करो, अगर मजे करना चाहते ही हो तो अच्छे से करो, वो थोड़े से मजे करके क्या ही हासिल हो जाएगा। जी हाँ, सो यहाँ पर बात कुछ ऐसे ही है। जब सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आज जेनिविया के साथ। दोस्तों साथ किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर मजे करना चाहते हो तो अच्छे से करो, अगर मजे करना चाहते ही हो तो अच्छे से करो, वो थोड़े से मजे करके क्या ही हासिल हो जाएगा। जी हाँ, सो यहाँ पर बात कुछ ऐसे ही है जहां पर दो ऑस्ट्रेलियन

ग्राउंड रियलिटी के साथ, और ग्राउंड रियलिटी के साथ मैं कहूंगी कि फील्ड में जाकर अगर इंजॉय नहीं किया तो क्या किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिक्शा ले लिया और उस रिक्शे के साथ उन्होंने पूरी इंडिया को घूमने की कोशिश कर डाली। जी हाँ, आपने सही सुना, ऑटो रिक्शा में वो घूम रहे थे फ्रॉम कोची टू जैसलमेर, मतलब कोची के कोस्टल एरिया से लेके जैसलमेर यानी कि राजस्थान के जैसलमेर रेगिस्तान तक वो ऑटो रिक्शा में पहुंच गए। जी हाँ, और जब उनके आजू बाजू से लोग गुजर रहे थे, उन्होंने उनको देखा कि वो बहुत ही अच्छे से कपड़े, ऊपर तो कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, उन्होंने सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट्स डाली हुई थी, बड़े ही मजे से उन्होंने एक रंगीला सा रिक्शा लिया हुआ था, उस पर अपना सामान जो है वो रखा हुआ था और बड़े ही मजे से उसको लेकर घूम रहे थे। तो जब आजू बाजू जाते हुए किसी ने उनसे पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो उन्होंने कहा वी आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और फिर उन्होंने आगे ये भी बताया कि कैसे वो कोची से जैसलमेर पहुंच गए हैं ऑन जस्ट रिक्शा। मतलब फ्लाइट, कौन सी फ्लाइट, अरे फ्लाइट ही ली तो फिर इंडिया में घूमने का फायदा क्या है, रिक्शा में अगर इंडिया नहीं घूमा तो क्या घूमा, और ये उन्होंने प्रूव कर दिया। जी हाँ, लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज्यादा जो है वो वायरल कर दिया है, सब लोग जो है कह रहे हैं कि बात में दम है भाई, अगर आप घूमने आए हो इंडिया को तो इंडिया की तरह घूमो ना। जी हाँ, सो अगेन बहुत ज्यादा पॉपुलर ये वीडियो हो रही है, आप मुझे बताइए क्या आपने भी इस वीडियो को देखा है। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: जी हाँ दोस्तों, और इससे पहले मैं आगे की ओर बढ़ूं, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूं कि आपका मदर्स डे का प्लान क्या है। जी हाँ, क्योंकि अब जब हम मिलेंगे तो मदर्स डे के बाद मिलेंगे, आज फ्राइडे है आपको तो पता ही है, राइट। सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोई सॉलिड प्लानिंग करी आपने मदर्स डे के लिए या नहीं करी, या फिर आप भी थोड़ा सा मजाक करना चाहते हो अपनी मम्मी के साथ और आपकी मम्मी बोलेंगे कि हाँ ठीक है, सो दिस मदर डे वेयर आर वी गोइंग, और आप सामने से कह सकते हो कि ओके वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर, वी हैव फूड एट होम, और फिर देखिए आपकी मम्मी आपके साथ क्या करती है। सो ऑफकोर्स आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, जो आपको करना है वो आपको प्यारा सा कोई जेस्चर दिखाना है। आई एम नॉट सेइंग कि गिफ्ट ही प्यारा जेस्चर होता है, बट मैं इतना कहूंगी कि कुछ अच्छा सा प्यारा सा जो है अपनी मॉम के लिए कीजिएगा, कुछ अच्छा सा जेस्चर उन्हें दिखाइएगा, कोई अच्छी सी एक्टिविटी उनके साथ कीजिएगा, कहीं उनको बाहर घुमाने लेकर जाइएगा, डिनर पे, लंच में, आई मीन वट एवर यू वॉन्ट। और अगर आप कुछ गिफ्ट दे सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेट्स बी रियल, मदर्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। नहीं, आई कैन लिटरली डिबेट दे, यू कैन ऑल्सो से कि नहीं, फादर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई एम गोना से कि ऑफकोर्स फादर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी जिंदगी हमारा ख्याल रखते हैं, हमें इतना ज्यादा प्यार करते हैं, और लड़कियों के लिए तो खासकर पापाज के साथ जो उनका कनेक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। बट विद द मदर्स ना, मदर्स वो क्या क्या नहीं करती है? मतलब हमें अपने पेट में कैरी करती हैं, अपनी बॉडी में कैरी करती हैं फॉर लिटरली 9 मंथ्स। इट इज अ पेनफुल प्रोसेस, और फिर हमें इतने अच्छे से नर्चर करती है, पहले अपने ब्लड से नर्चर करती हैं, फिर उसके बाद अपने यू नो मिल्क एंड पूरा का पूरा न्योछावर वो कर देती हैं अपने आप को हमारे ऊपर सेल्फलेसली, लिटरली। मतलब आप कितना भी डिबेट कर लो बट फादर्स कांट डू इट, मतलब बायोलॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। So mothers are mothers and there is nothing and no one जो कि उनके साथ compare कर सकता है। So mother के love को celebrate कीजिए, जो भी आपकी mom को पसंद है वो कीजिए, उनको date पे लेकर जाइए, उनको movie लेकर जाइए, उनको खाना खिलाने लेकर जाइए, या फिर अगर आप घर पर ही है तो उनको कुछ भी करने मत दीजिए, कोई भी काम करने मत दीजिए। मतलब वो हर दिन हमारे लिए you know खाना बनाने से लेकर हर चीज, हमारी चीजें संभाल संभाल कर रखती है, इतना कुछ करती है हमारे लिए। So मैं इतना कहूँ कि वो एक दिन उनको अच्छे से डेडिकेट कीजिए, ऑल्दो एवरी डे शुड बी मदर्स डे, बट एटलीस्ट वो एक दिन उनके लिए अच्छे से डेडिकेट करके रखे, बिकॉज शी लिटरली डिजर्व्स इट। इसी के साथ यहां पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए, क्योंकि फाइनली सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड शुरू हो रहा है, मतलब पुराने गानों का ये खूबसूरत सेगमेंट, ये जर्नी शुरू हो रही है। अगर आपके पास कोई पुराना गाना है तो जल्दी से उसे फरमाइश कर दीजिए, क्योंकि दिस इज द परफेक्ट टाइम, एंड पुराने किस्से होंगे, पुराने गाने होंगे, तो आइए जल्दी से आ जाइए, सवार हो जाइए हमारे साथ इस सफर पर।
1: At its core, Windows

जी दोस्तों, तो एक चीज तो पक्की है, कुछ गाने ना आपको सच में किसी अलग जोन में ले जाते हैं, एंड आई गेस दिस सॉन्ग इज ऑल्सो वन ऑफ दोज सॉन्ग्स। एंड अगर आपने इसकी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ये गाना जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। धर्मेंद्र और राखी आपको इसमें दिखेंगे, और मूवी है जीवन मृत्यु, 1970 में ये मूवी आई थी। नाउ धर्मेंद्र के बारे में हम क्या ही बात करें, मतलब धर्मेंद्र ने जितनी भी मूवीज की हैं उन्होंने मंत्रमुग्ध किया है अपने साथ काम करने वाले एक्ट्रेसेस को, और ये बात हर एक्टर ने कही है। इनफैक्ट एक ऐसी एक्ट्रेस ने भी कही है जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड तौर से कंसिडर की जाती है, मतलब उनके लिए रिस्पेक्ट जो है वो हर किसी फिल्म स्टार के मन में है। आई एम टॉकिंग अबाउट वहीदा रहमान जी, मतलब वहीदा रहमान जी की रिस्पेक्ट जो है वो अनदर लेवल पर रही है हर किसी एक्टर के मन में। उन्होंने भी ये चीज एक्सेप्ट की है कि कैसे धर्मेंद्र was really really really handsome, but again ये बात तो मैं कह ही सकती हूँ कि ना सिर्फ एक्ट्रेसेस बल्कि मेरी बहुत सारी लिसनर्स भी हैं, कुछ लिसनर्स में तो बहुत ज्यादा धर्मेंद्र को पसंद करती रही हैं, और उनकी फैन हो भी कैसे ना, मतलब उनके बिल्ड, उनकी खूबसूरती, उनका चेहरा और उनका वो एकदम जिंदगी को देखने का वो सीधा तरीका कि ओके, मतलब अच्छा फेयर एंड स्क्वेयर होना चाहिए सब कुछ, कुछ भी शेडी नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र वॉज नॉट अ पर्सन जो कि दिल में कुछ और रखते थे और बोलते कुछ और थे। सो अगेन यहां पर भी वो आपको बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगेंगे, और आपको ये खूबसूरत सी जोड़ी भी बहुत ही प्यारी लगेगी जो कि उन्होंने राखी के साथ यहां पर बनाई है। इसी के साथ यहां पर एक और खूबसूरत सा गाना जो कि रफी साहब की आवाज में मैं आपको सुनाने वाली हूं, सुनते हैं इसका और फिर करते हैं और भी बातें।

0: जन्म लिए।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस।
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
4: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
4: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
5: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निव्या के साथ। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की जिंदगी में, हर किसी की फैमिली में, हर किसी के घर में कोई एक ना एक इंसान कंजूस तो जरूर होता है। मतलब कंजूस एग्जैक्टली नहीं भी होगा तो वैल्यू फॉर मनी वाली जो सिचुएशन है वो सबसे ज्यादा उन्हीं को समझ आती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा खर्चा करते हैं, मतलब उनके पास पैसे बचते ही नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जो लिटरली हर किसी चीज में पैसा बचा लेते हैं, मेरे भी घर में। लेकिन जब यही बात पूछी गई एक कार्यक्रम में रणधीर कपूर जी से, तो और साथ में करिश्मा कपूर जी से, तो करिश्मा कपूर ने रणधीर कपूर की तरफ इशारा कर दिया और उन्होंने जो आगे बताया वो बहुत ही फनी था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ बिल्कुल शेयर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम सभी कहीं भी घूमने जाते हैं, जैसे लंदन घूमने जाते हैं, तो सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि ओके लंदन आए हैं, बहुत अच्छा खाना खाएंगे और बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। तो हम सब तो अपने में लगे होते थे, इनको जो है वो हमेशा अकेले जो है वो शॉपिंग जाना पसंद है। मतलब उन्होंने अपने पिता का नाम लिया कि हमारे पापा को हमेशा बाहर जाना पसंद है शॉपिंग के लिए, वो भी अकेले। तो वो जब आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि कैसे, आपने क्या क्या किया आज? तो उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पे खाना खाया, मैंने यहाँ पर शॉपिंग की। तो जब करिश्मा कपूर कहती है कि ठीक है, अच्छा कहाँ है शॉपिंग, शो मी द शॉपिंग, देन एंड देन वो सामने से निकालते हैं मोजे। रणधीर कपूर को जब भी शॉपिंग करने के लिए भेजा जाता था वो सिर्फ मोजे लेकर आते, तो कहते ये बस इतनी ही शॉपिंग और शॉपिंग नहीं है। तो ही वाज लाइक कि ओके ठीक है, और शॉपिंग करनी थी क्या? ऑफ कोर्स। तो अगले दिन वो फिर से जाते हैं और वो जाते हैं और अगले दिन फिर से मोजा, लेकिन एक और चीज लेकर आते हैं। आप लोग बोलोगे कि अच्छा चलो फाइनली एक और चीज लेकर आए। तो वो सामने से करिश्मा कपूर कहती है अगले दिन जब आए वापस तो मोजों के साथ एक रूमाल भी लेकर आए। जी हाँ, अब जब उनसे पूछा गया कि क्या सीन है, तो रणधीर कपूर बड़े ही स्टाइल से बोलते हैं कि क्या करना है, क्या जरूरत है, एक मर्द को शॉपिंग की क्या जरूरत है, बस एक दो मोजे हो जाए, दो तीन मोजे हो जाए, टाई हो जाए, दो तीन शर्ट हो जाए और एक दो पैंट हो जाए, बस इसी में जिंदगी निकल जाती है। एंड मैं ये सब का सब जब सुन रही थी तो मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि या मतलब स्टार्स आर जस्ट लाइक अस। जैसे हमारी फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होता है, वैसे ही कपूर खानदान में भी ऐसे शख्स हैं। जी हाँ, जब उनसे ये पूछा गया कि कपूर खानदान में सबसे गुस्सैल कपूर कौन था, तो ऑफ कोर्स उन्होंने नाम लिया ऋषि कपूर, और ये रणधीर कपूर ने खुद ही नाम ले दिया। जी हाँ, और यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि ओके वो कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं। इस बात से तो हम खुद भी अग्री कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कैसे उन्होंने ट्वीट कर दिया था इतना खतरनाक कि बाहर 300-400 लोग इकट्ठे हो गए थे और पुलिस भी आ गई थी। सो या कपूर खानदान के लोग भी हमारी तरह हैं। और जब उनसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा खाना पसंद करने वाला कपूर कौन है, तो उन्होंने बड़े स्टाइल से बोला, अरे ये बात कोई पूछने वाली बात है, तुमने देखा नहीं हम सब कपूर कितने हरे भरे हैं, कहते इतने अच्छे से कहते दिखते हैं, तो हम सब खाना पसंद करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज द सिंधी ब्लड दे आर टॉकिंग अबाउट। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत है, और इसका नाम है चल कहीं दूर निकल जाएं।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। और आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि घड़ी कह चुकी है, इशारा कर चुकी है कि निव्या शर्मा फ्राइडे की शाम है। अब आप रुखसती लीजिए, क्योंकि अब हमें और बहुत सारी मजेदार चीजें करनी है, और आपको ही नहीं मुझे भी करनी है। सो ऑफकोर्स मैं यहाँ पर जा रही हूँ, लेकिन कल वापस आऊंगी टॉप 10 हॉट 10 में, एक घंटे के लिए ही, पर वापसी जरूर होगी। मजेदार गाने, बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम, और इवनिंग वाइब में प्रेरणा होगा अब आपसे मंडे। लेकिन अब जो गाना मैं प्ले करने वाली हूं वो फ्राइडे का रियल मूड है, एटलीस्ट फॉर मी। एंड ऑफ कोर्स मैं क्या कह रही हूं कि आप लोग भी फ्राइडे की शुरुआत ना, आई मीन वीकेंड की शुरुआत इसी गाने से कीजिए। मतलब जो मस्ती आप फील करेंगे ना इस गाने के बाद, ऐसा कोई गाना है ही नहीं जो आपको ऐसी मस्ती फील करवा सकता है। आपको बता दूं कि रफी साहब का यह गाना है, शमी कपूर और सायरा बानो की मूवी का है, और यह सायरा बानो की डेब्यू मूवी भी रही है। क्या आप गेस कर चुके हैं? जी हाँ, मतलब उसकी स्टार्टिंग ही इतनी खतरनाक है। जी हाँ, मतलब मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ऑफ कोर्स मैं करूंगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने कर दिया तो फिर आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा, और शायद आपको पता चल भी गया। सो या बाय, सी यू, टाटा, मस्ती कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, और सुनिए इस गाने को, क्योंकि ये है चाहे कोई मुझे जंगली कहे, मतलब मुझे ये गाना प्ले करने से अभी कोई भी नहीं रोक सकता, बिकॉज दिस इज फ्राइडे एंड आई एम गोना डू इट। सो या हैव फन, मजे कीजिए, बाय, सी यू, टाटा।

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: To everyone tuning into Radio Biswani, this is Shah Rukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan, and you are listening to Radio Biswani.

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलेन।
1: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन में आज मौसम और स्थानीय परिस्थितियों पर नजर बनी हुई है। ब्रिस्बेन की रिपोर्ट के मुताबिक क्वींसलैंड के कुछ हिस्सों में ठंडी हवा और तापमान में गिरावट देखी गई है। वहीं मौसम से जुड़ी दूसरी रिपोर्ट में ब्रिस्बेन के पास थंडर स्टॉर्म की संभावना का जिक्र है, जिससे शाम के समय स्थानीय लोगों को अचानक बारिश या बिजली गर्जना का सामना करना पड़ सकता है, बट ये सिर्फ कुछ इलाकों के लिए है। वहीं शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एक बड़ी बात यह है कि क्वींसलैंड काउंसिल को लंबे समय से भूले हुए सड़क प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा बजट मिला है, जिससे ब्रिस्बेन और आसपास की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। वहीं ब्रिस्बेन के कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हलचल है। एक संगीत स्थल से जुड़ी डेवलपमेंट अपील ने स्थानीय आर्ट और कम्युनिटी स्पेस पर नई बहस शुरू कर दी है। इसी के साथ शहर की अदालतों से जुड़ी एक गंभीर खबर में एक पूर्व थिएटर बॉस पर कई आपराधिक आरोपों के तहत सुनवाई की बात सामने आई है, जिसने स्थानीय समुदाय में चिंता बढ़ाई है। इसके साथ ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड में फायर एंट्स जैसी पर्यावरणीय संकट पर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा है। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। भारतीय उद्योग जगत से आज एक बड़ी आर्थिक खबर आई है, जहां पैक्ड फूड सेक्टर की दिग्गज कंपनी ब्रिटानिया के शेयरों में दबाव देखा गया, क्योंकि कंपनी ने कीमतें बढ़ाने की चेतावनी दी है। वहीं रेलवे से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट के मुताबिक टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन सिस्टम को और तेज करने की दिशा में काम चल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार वोटिंग टिकट कंफर्मेशन को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ सकता है। इसी के साथ महाराष्ट्र से एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक खबर सामने आई, जहां संसद में किसानों पर कथित पिटाई का मुद्दा उठाने की तैयारी की जा रही है। इसे राज्य से एक दुखद घरेलू घटना भी सामने आई है। वहीं केंद्र सरकार की नई नीतियों और योजनाओं पर भी आज चर्चा तेज है। श्रमिकों के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप जैसी पहल और नौकरी से जुड़े कई अपडेट्स खबरों में बने हुए हैं। ऐसे के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी सुर्खियों में अमेरिका ईरान तनाव बना हुआ है। रूटर्स के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में हालात फिर से गर्म है और ये तनाव तेल सुरक्षा और वैश्विक कूटनीति तीनों पर असर डाल रहा है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम एशिया से जुड़ी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, क्योंकि हालिया रिपोर्ट्स में ईरान के बंदरगाह और रणनीतिक ठिकानों पर हमलों की चर्चा सामने आई है। वहीं दक्षिण कोरिया में भी राजनीतिक माहौल अहम मोड़ पर है, जहां आने वाले स्थानीय चुनावों पर पूर्व राष्ट्रपति से जुड़े विवाद की छाया पड़ने की बात रूटर्स ने रिपोर्ट की है। वहीं सिंगापुर में क्रूज से जुड़े एक स्वास्थ्य अलर्ट के बाद दो लोगों की जांच की जा रही है। ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यात्रा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और संक्रमण नियंत्रण को लेकर चिंता बढ़ी है। वहीं वेनेजुएला से भी एक गंभीर मानवाधिकार से जुड़ी खबर आई है, जहां एक बंदी की मौत के आधिकारिक पुष्टि हुई है। इस मामले में वहां की न्याय व्यवस्था और हिरासत स्थितियों पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले क्रिकेट की दुनिया में इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का रोमांच जारी है। मुंबई इंडियंस से जुड़ी हालिया परफॉर्मेंस ने मैच फैंस का ध्यान खींचा है। वहीं रूटर्स के खेल सेक्शन के मुताबिक कुछ बड़े मुकाबलों में टीमों की रणनीति और प्लेऑफ की स्थिति सुर्खियों में है। इस समय हर मैच पॉइंट्स टेबल को सीधा बदल रहा है। इसके साथ महिला क्रिकेट और नए सीजन से जुड़ी घोषणाएं भी खेल जगत में ध्यान खींच रही है। लीग कैलेंडर, टीम संयोजन और खिलाड़ी उपलब्धता जैसे मुद्दे इस वक्त चर्चा में हैं। वहीं फुटबॉल में यूरोप लीग जैसी प्रतियोगिताओं में बड़े परिणाम आ रहे हैं, जहां कुछ टीमों ने शानदार जीत दर्ज कर फाइनल की दौड़ को और दिलचस्प बना दिया है। वहीं टेनिस और विंटर स्पोर्ट्स के मोर्चे पर भी दुनिया भर से अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी स्पोर्ट्स सुर्खी क्रिकेट से ही रिलेटेड है। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality, service and reasonable prices.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रेज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, ब्रेज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। I'm so confused.
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
8: से. To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

माने या ना माने बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
3: एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर, एक प्रॉब्लम हो गई।
4: क्या?
3: मॉडल नहीं आ रही।
4: क्यों
3: सर? आपके मोबाइल पे उनका फोन आया था कि वो नहीं आएगी।
4: ला फोन दे।

0: ਹਮੇਸ਼ਾ।
1: हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी हाँ बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 FM ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बन चुके हो ढेर सारिया गल्लां से हमेशा की तरह करनिया नहीं करनिया हैगियां ने नालों नाल इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसीं की कहना है तुसीं जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बिस्वानी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है जिहदे बिस्वानी @bisswani.com साडी ईमेल आई डी है जरिए तुहानू जिहड़ा चंगा लगता है तुसीं ओह अपना लो बस साडे नाल गल्लां बातां दा जरूर करो है ना। तां फटाफट दे नाल जुड़ना तुसीं शुरू करो अपनियां फरमाइशां भी रखो दिल दीआं गल्लां भी करो ते मैं हुणे वापस आउंनी आ। कल्ले तुसीं बिल्कुल भी नहीं रहोगे थोनू सुणाउनी आ इस सोहणे सोहणे गीत।

हाँ जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 FM ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो थिएटर के नाल ही ना अजकल ओटीटी एंटरटेनमेंट के लिए जबरदस्त प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। हमेशा इस दी गल करदे हुंदे आ तो मैं तुहानू जबरदस्त अलग अलग तरह दी मूवीज बारे भी जरूर दसदी हुंदी आ। ते जितों तक सिर्फ कुछ फिल्मां या सीरीज नहीं बल्कि कई हफ्ते कई ऑप्शंस थोनों देखने मिल जाएंगे जब दर्शक अपनी पसंद के जोनर दी फिल्मां सीरीज देख सकते हैं। तो अजे जेकर तुसी मिस्ट्री दे नाल थ्रिलर फिल्मां दे दीवाने हैगे हो ना तो अज मैं थोनों कुछ अजिहियां बेहतरीन फिल्मां बारे दसूंगी ना जो ओटीटी ते ट्रेंड कर दियां रहियां ने ते जिन्हां दा जदों तुसी एंड देखोगे ना तो तुहाडा अपना सिर हिल जाऊगा। इस तरह दियां हैगियां ने, मतलब दिमाग सुन्न हो जाऊगा। इस तरह की मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज है कि यानी ही। एक एक करके दस दिया सब बारे, पहला सुनो तुसी एक गीत।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवाने 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन से बने हुए हो। इस लिस्ट दे विच पहला नाम लिस्ट केड़ी है कि

0: ना पंगा नहीं लईदा।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
5: ओम्सॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसानी वन सारा वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिराल से बने हुए। इस तो बाद अगला नाम इस लिस्ट विच उस फिल्म का हैगा है जो बहुत ही ज्यादा खास है। आई थिंक कई देख ली होनी है क्योंकि इन्नी ज्यादा सोहनी फिल्म है ना कि एंड देख के तो तुम खुद ही हैरान हो जाओगे ते तुम कहोगे ओहो शुक्र है ये नहीं होया इस तरह का एंड है। तो फिल्म का नाम है जी महाराजा। विजय सेतुपति की फिल्म है महाराजा। इस साल 2024 रिलीज किया गया सी ते एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिस विच जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। इसकी IMDb रेटिंग हैगी है जी 8.3 हैगी है। इस विच विजय सेतुपति ने एक बेटी के पिता का रोल प्ले किया है। इस विच एक कूड़ेदान की कहानी नूं दिखाया गया है। विजय सेतुपति ने इस फिल्म नूं डायरेक्टर नैटफ्लिक्स डायरेक्ट नैटफ्लिक्स से रिलीज किया सीगा ते एक कई हफ्ते तक OTT ते ट्रेंडिंग लिस्ट विच भी बनी रही सी। तो तुसीं इस नूं जरूर देखो क्योंकि नो डाउट ये बहुत ज्यादा सोहनी फिल्म है।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Mera naam Dr. Kumar hai. Aur yahan kuch aisa hai जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: हाँ जी, मुड़ा सदुंगा था।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दे नाल बने हुए हो। इस लिस्ट विच अगला नाम जेड़ा हैगा है वो है जी रत्तासन। साल 2018 विच आई सी फिल्म रत्तासन ते ओटीटी ते वड्डी सफलता हाथ लगी है। इस फिल्म दी एक मलयालम फिल्म है जिस विच एक किलर दी कहानी नु दिखाया गया है जो सूबे विच जवान कुड़ियां नु किडनैप करता है ते फिर उन्हां दा बड़ी बेरहमी दे नाल कतल कर दिंदा है। अपराधी पुलिस नु वार वार चकमा दिंदा है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग हैगी है जेड़ी 8.3 हैगी है। रिपोर्ट से बनी है तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस ते भी शानदार परफॉर्मेंस दी सीगी। 20 करोड़ दे बजट विच बड़ी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ का बिजनेस किया। इस नु हुण तुसी जी प्लस हॉट स्टार ते देख सकते हो।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रस्वानी 101 एम ते जी आर जी संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए हुण आंदा हैगा जी अगली फिल्म दा नाम के अगली केड़ी फिल्म हैगी है इस लिस्ट दे विच शुमार उस बारे भी दसना बहुत ज्यादा जरूर है। मैं दसूंगी भी जरूर क्यों नहीं दसना है। एक एक करके सारिया फिल्मों बारे जो मैं दस रही है तो इस फिल्म नु किवें पिछे छड़ देना दस दी इस बारे ते अगली जेड़ी फिल्म हैगी है उसका नाम है जी हिट दी सैकेंड केस। आदि आदि भी शेष दी हिट मिस्ट्री फिल्म हैगी है द हिट दी सैकेंड केस। प्राइम वीडियो ते अवेलेबल हैगी है तुसी उत्थे देख सकते हो। ये फिल्म ओटीटी ही नहीं थिएटर्स से भी हिट रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ना फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से 15 करोड़ के बजट विच इंडिया विच 25.92 मतलब कि 26 करोड़ के करीब की कमाई की है। वर्ल्ड वाइड 42 करोड़ रुपए का बिजनेस किया इस फिल्म ने। Girls in the music.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

वेलकम बैक जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो दसवानी 101 एम ते जीआर चे संदेश वालक दे नाल तुसीं बने होए हो। इस लिस्ट दे विच हुण तुसीं सोच रहे होंगे कि अगली केड़ी फिल्म हैगी है। अगली फिल्म हैगी है जी थडम। थडम हैगी है जिहड़ी ओह वी एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हैगी है जिस विच जुड़वा भरावां दी कहानी देखण मिलदी है। ए ओटीटी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट ते अवेलेबल हैगी है जे तुहानूं पता होवे इस बारे। तां इसने इसनूं ना 2019 विच रिलीज़ कीता गया सी। खैर हुण इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलैक्शन दे बारे विच गल कीती जावे तां रिपोर्ट दे मुताबिक ना बजट इसका 14 करोड़ सी ती इंडिया नेट कलैक्शन इसकी 19 करोड़ के करीब सी। इना ही नहीं इसका वर्ल्ड वाइड कलैक्शन हैगा जिहड़ा 26 करोड़ के करीब सी। ते अच्छी फिल्म है, वन टाइम वॉच तां जरूर है।

0: शूटर कालों पहले गाने तो ही पहचान मिल गई सी, बच्चे बच्चे नूं पता लग गया सीगे पंजाब विच कोई शूटर कालों नाम का भी बंदा है।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

जी आयनु जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिराल से बने हुए। अगली फिल्म इस लिस्ट विच हैगी है जेड़ी ओ वी बहुत ज्यादा अच्छी हैगी है। ये फिल्म जिन्हों बारे में तुम दस रही है ना, ये थोड़िया जी अंडर रेटड रह जाए ने, अंडर रेटड होंगे ने जरूर, बट ये सोहनिया बहुत हैगिया ने। तो ये जी अगली फिल्म ओ वी इस कैटागरी आँदी है, यह नाम है इरूल। 2021 आई सी फिल्म तमिल की हैगी है, तमिल क्राइम थ्रिलर फिल्म हैगी है इरूल। इस विच कमाल की मिस्ट्री ते थ्रिलर देखने को मिलता है। इस विच फहाद फासिल वर्गे बेहतरीन कलाकार है, हम लोग रोल निभा रहे हैं। एक हत्या ते आधारित है फिल्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म नैटफ्लिक्स से अवेलेबल हैगी है। फिल्म नू ओटीटी ते ही रिलीज किया गया सी ते लोगों वालों जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलिया।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Mera naam Dr. Kumar hai. Aur yahan kuch aisa hai, जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
4: तू बेचदा, तू बेचदा।

जी बेड़ा तो हो चुका है कि थोड़े तो इजाजत ले ली जावे, पर जाते जाते एक फिल्म अजि हैगी है जिस बारे दसना काफी ज्यादा जरूरी है गया, तो मैं सोचा कि उस बारे तुम दस देनी हैगी है। तो वह फिल्म हैगी है जी मुंबई पुलिस, पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर फिल्म हैगी है। मुंबई पुलिस इस 2013 में रिलीज किया गया, मलयालम थ्रिलर फिल्म हैगी है। रिपोर्ट से मनिए तो इसका बॉक्स ऑफिस कलैक्शन है 10 से 15 करोड़ रुपए का रहा है। तो इसकी IMDb रेटिंग 7.9 है। तो इसी जियो हॉट स्टार से देख सकते हो, जरूर देखियो, सच्ची बहुत ज्यादा सोहनी है। बाकी असी तो मिलते ही रहना है, हूँ फिलहाल तो वेला थोड़ा टाटा बाय बाय कहता है, पर वादा यह है कि कल फिर मुलाकात करा। तो यही कहना चाहन लगी कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। सत श्री अकाल।

0: riding around in Cali.
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
3: अरे वाह, इनका पता बताना.
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 16

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $1,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: जानू।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। प्री सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डिजिसेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.

पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: लगता रूम में रह गया।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: आया क्या?
3: आएगा।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $1,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉपअप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlum and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नु अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $1,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉपअप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506। 3279-2506।

प्रिय श्रोतागण, परमानंद का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आपका हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ संगीत सरगम नमक प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस प्रकार है। मौसम की खबर से प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा मैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम 7:15 आज सुबह का सितारा, 8 से लेकर 8:15 तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नए गीतों के साथ ठीक 8:30 संगीत सरगम नामक कार्यक्रम।

मित्रों आज 9 तारीख है, 9 तारीख मई सन 2026 और इस समय 6:30 बज चुके हैं रेडियो ब्रिजबानी के स्टूडियो में। और अब संगीत सरगम प्रोग्राम में मैं परमानंद उपस्थित हो चुका हूं। और चलें सर्वप्रथम ब्रिजबन मौसमी दफ्तर ने हमें निम्न मौसम के खबर प्रदान किए हैं, जिसके अनुसार आज धूप निकलेगी साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में। ठंड तो है, इस समय 6:16 पर सूर्य उदय हुआ है ब्रिजबन में। और आज दिन में ब्रिजबन में 23 रहेगा दिन में, रात्रि को 11, हवा का रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इप्सुच में 23 रहेगा दिन में, रात्रि को 9, हवा का रफ्तार 8। और कलाउंड्रा में सनशाइन कोस्ट में 22 दिन में, रात्रि को 14 और हवा का रफ्तार भी 14 है। और इधर साउथ पोर्ट या गोल्ड कोस्ट इलाके में 22 दिन में, रात्रि को 15, हवा का रफ्तार 14। तो ये साउथ ईस्ट क्वींसलैंड का मौसम था, जो आज के अनुमान के मुताबिक धूप निकलेगी लेकिन ठंड रहेगा, याद रहे। अब ले चलते हैं ओकलैंड न्यूजीलैंड, जहां पर हल्की बारिश होती रहेगी, 18 दिन में रहेगा, रात्रि को 14 और 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु बहेगी। 7:06 पर सूर्य उदय हुआ है, 5:27 पर सूर्य अस्त होगा। और वेलिंगटन में समय समय पर धूप निकलेगी, अन्यथा आकाश पर घटा छाई रहेगी। 15 रहेगा दिन में, रात्रि को 13, हवा का रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा। फिनलैंडी लंबासा और सुबा ले चलते हैं फिजी के तीन केंद्रों पर। और नेंडी में धूप रहेगी और 27 दिन में, रात्रि को 21, हवा का रफ्तार 11। 6:26 पर सूर्य उदय हुआ है, 6:45 सूर्य अस्त होगा। और लंबासा में धूप निकलने के साथ साथ 28 दिन में, रात्रि को 21, हवा का रफ्तार 11। और सुबह में समय समय पर धूप निकलेगी, अन्यथा आकाश पर घटा छाई रहेगी। 26 दिन में, रात्रि को 22, हवा का रफ्तार 11। अब आपको ले चलते हैं भारत द्वीप। अमृतसर में धूप निकलेगी, 37 मैक्सिमम, 26 मिनिमम, 10 विंड स्पीड। एंड न्यू दिल्ली विल बी द सेम, सनी, 36 मैक्सिमम, 26 मिनिमम, 10 विंड स्पीड। 5:34 सनराइज, 7 PM सनसेट। मुंबई में धूप निकलने के साथ साथ 33 रहेगा दिन में, रात्रि को 28, हवा का रफ्तार 27। और ये स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के मौसम के खबर थे मित्रों। मुझे तो ऐसे लगा कि भाई मैं पिछले शनिवार को आया था, कैसे इतना जल्द फिर शनिवार आ चुका है। ऐसे लग रहा कि सभी कुछ रफ्तार में ही आगे बढ़ रहा है। तो स्टूडियो का नंबर याद रहे 3279-1701। और अगर आप बात करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 0411-127-035। और ये प्रोग्राम ठीक 8:30 तक चलता रहेगा। इसके बीच 8:00 रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। और कैसा भी था आपका वीकेंड, अगर कुछ गल करनी है, बात करनी है तो अभी कॉल कर सकते हो, अन्यथा कुछ चुने हुए गीतों का लेकर आया हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आएंगे। और संगीत सरगम प्रोग्राम हर शनिवार के सुबह हम इस वक्त लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 5:00 जी नहीं, मैं उठा हूँ 4:30 मैं ये बोल दूँ आपसे। और मोहम्मद अजीज जी आ रहे हैं और साथ में अलका याग्निक जी रहे हैं। जी नहीं, साधना सरगम है इसमें। जी नहीं, आशा भोसले, क्या मैं कर रहा हूँ आज, आज कुछ गलत गलत आपको सलाह दे रहा हूँ गीतों के बारे में। तो ये है, मैं क्या बोलूँ इस गीत के बारे में। और कभी कभी हम उठते हैं, कोई हमें ज्योतिष बोलता है, गुरु बतला दें कि दोनों हाथ देखकर माथे पर अपने चेहरे पर वो उतार लें और दिन के बारे में सोच लें, प्रार्थना कर लें और फिर निकलें। लेकिन कभी कभी क्या होता, बोलते हैं ना कि किसका चेहरा आज मैं देख लिया, मेरा दिन बहुत खूबसूरती से बीतेगा। तो यही मैं ख्याल लेकर आया हूँ आपके लिए। और रात भर अगर नींद ना आए और फिर सोचें और किसी से मुलाकात हो जाए तो फिर कैसा गीत चाहिए। चलो, जनाब मोहम्मद अजीज साहब और साथ में आशा भोसले जी आ रही हैं। जुल्म को जला दूंगा फिल्म का नाम है, चलो सुनते हैं।

क्या बात है मित्रों, बच के रहना तुम्हारे एक इल्जाम से बहुत ही खूबसूरत सा दो गाना था और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। और अमला जी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, आप भी प्रोग्राम सुन रही हैं, अच्छा लग रहा है सुबह के बेला में, आप भी उठ चुकी हैं जल्दी जल्दी और हम भी यहाँ जाग उठे हैं भाई। ब्रिस्बेन का मौसम भी प्यारा है इस समय, मैं कहूँगा ठंड तो है, ठंड तो है लेकिन बढ़िया है। और अभी आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे एक और मज़ेदार गीत के साथ, और इस बार बारी रहेगी सोनू निगम जी का, अवसाद देंगी श्रेया घोषाल जी। क्या बात है, ये भी कुछ ऐसे आज नंबर लेकर आए ना आपके लिए कि कुछ याद ताज़ा हो जाए। कोई तुम सा नहीं, कभी कभी जीवन में रिश्ते बनते हैं, सब कुछ होता है, फिर हम सोचने लगते हैं एक दूसरे के बारे में, फ्लैशबैक में चले जाते हैं और फिर उनके जो अच्छे अच्छे गुण थे, अच्छे अच्छे समय बिताए हैं वो याद आते हैं, और फिर अगर मौके पर मिल जाए तो उसको हम दोहरा देते हैं। सहारा किसका लेना चाहिए, गीतों का।

0: जी मित्रों, ये था फिल्म कृष का गीत, और इस गीत में संगीत निर्देशन था नसीर फराज जी का, और राकेश रोशन जी संगीत से संवारा था। इस समय रेडियो ब्रिजबानी की घड़ी में लगभग 7:15 बज रहे हैं, और हम आगे बढ़ते हैं कुछ विज्ञापन की तरफ भी ख्याल करते चलूं मैं। तो पहला विज्ञापन आज का ये है,
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिजबन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है, और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है, और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
0: मित्रों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलें, एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। ये गाना बहुत ही पॉपुलर है, हमेशा कोई फंक्शन वगैरह होता है, पार्टियां होती हैं, तो अक्सर लोग इसे गुनगुनाते हैं। आवाज है एक बार फिर मोहम्मद अजीज साहब, आ रही हैं साधना सरगम जी, आपके आ जाने से क्या बात है। मालूम नहीं आपको कैसा लग रहा है जब मैं आ जाता हूं यहां पर।

0: तो मित्रों, ये था फिल्म खुदगर्ज का लोकप्रिय गीत जो अभी आप सुन रहे थे। और इसी के साथ ही रेडियो की तरफ देख रहा हूँ, घड़ी की तरफ, तो 7 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। और परमानंद के साथ आप संगीत सरगम नामक कार्यक्रम को सुन रहे हैं। चलिए विज्ञापन की तरफ एक खबर सुन लेते हैं, फिर हम एक और गीत लेकर उपस्थित होते हैं आपके लिए।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
0: जी मित्रों, हम आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। इस बार हम आपके हैं कौन फिल्म का अति लोकप्रिय गीत, और इसे पेश कर रही हैं आशा लता जी, और साथ दे रहे हैं SP बाला सुंदरम साहब।
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: जी मित्रों, बहुत प्यारा सा दो गाना था ये, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और हम चलते हैं एक खबर और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। खबर क्या है सुनते हैं।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
0: जी मित्रों, विज्ञापन के साथ साथ हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 7 बज रहा है और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी, आपकी अपनी पहचान, जिसका प्रसारण हम कर रहे हैं 1700 AM के माध्यम से 7 in Mile रॉक्स ब्रिजबन ऑस्ट्रेलिया से। हमारे यहाँ शनिवार 9 मई 2026 है, सुबह का बेला है ब्रिजबन समय अनुसार 7 बजा इस समय। एक बार फिर मौसम पर नजर डालते हैं, लेकिन सिर्फ साउथ ईस्ट क्वींसलैंड के लिए। आज पूरे साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में, जिनमें ब्रिस्बेन, इप्सविच, सनशाइन कोस्ट, गोल्ड कोस्ट शामिल हैं, 23 डिग्री रहेगा ब्रिस्बेन तथा इप्सविच में और 22 डिग्री रहेगा सनशाइन कोस्ट तथा गोल्ड कोस्ट में। रात्रि के समय चादर वगैरह अच्छी तरह ओढ़ लेना है। 9 से लेकर 15 डिग्री तापमान रहेगी और आज का दिन बहुत बढ़िया है घूमने फिरने के लिए। और आगे क्या बोलूँ, पोशाक अच्छी होनी चाहिए। कहीं पार्टी शार्टी में जा रहे हैं तो भाई थोड़ा गर्म कपड़ा लेकर जरूर जाएं, क्योंकि थोड़ा हवा का भी रफ्तार रहेगा और साथ में ठंड है। अब वो विंटर आने लगा ऐसे लग रहा है ना, बारिश तो अभी कोई चिन्ह नहीं है एक दो दिन, और फिर बुधवार से ऐसे शायद कुछ आ जाए लौट कर। पुराने गीतों का कार्यक्रम में आज जो गीतों का मैं चुना हूँ, पहला गीत के बाद में ऐसे गाने हैं जो बहुत सारे पुराने याद हमें दिलाते हैं, एक फ्लैशबैक में लेकर चले जाएंगे। जब मैं लोगों से बात करता हूँ या मिलते हैं कहीं कोई फंक्शन वगैरह में, महिलाएं होती हैं, पुरुष भी होते हैं, तो हमेशा ये कहते हैं कि यार क्या बात है, आप हमें लौटा दिए बचपना के तरफ या टीनेजर के तरफ या जब शादी हुई थी तब। तो आपका शुक्रिया है कि आप प्रोग्राम सुनते हैं, टिप्पणी भी करते हैं, अच्छा लगता है। जयम शशि, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते जी, क्या कर रहे हो? चलो आप लोग तो भाई सुबह से सुनने लगते हैं प्रोग्राम। एक गीत जो लेकर आया हूँ, किशोर कुमार जी आ रहे हैं लता जी के साथ, और क्या मैं बोलूँ आगे।

0: जय मित्रों, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, बहुत ही प्यारा सा गीत था। उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
0: और मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अब छोटी सी बात, एक बहुत प्यारी फिल्म आई थी जो लोगों ने बेहद पसंद किए। पुराने गीतों का कार्यक्रम आप सुनने जा रहे हैं। तो इस फिल्म में कई गाने हैं जो सुपरहिट हुए, लेकिन लता जी का सुर प्रदान किया गया गाना जो है, न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, ये सही माने में तो बीती घटनाओं पर आधारित है जैसे आप और मैं हैं, ये हमारे ऊपर बीती होगी। तो चलो सुनते हैं।

मित्रों, छोटी सी बात फिल्म का लोकप्रिय गीत आप सुने और चलें एक और खबर सुनते हैं फिर। आज मेरे ख्याल से दो गीतों के बाद हम लेकर आएंगे राव जी को, क्योंकि मैं कुछ एक एक गीत के बाद एक और बजाना चाहता हूं, उसके बाद उसे लेकर आएंगे।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: प्रिय श्रोतागण, इस समय 12 मिनट हुए हैं 7 बजकर। परमानंद का साथ है संगीत सरगम नमक कार्यक्रम में। शनिवार के सुबह है, प्यारा सा मौसम है, ठंड तो है लेकिन धूप भी निकली हुई है तो बढ़िया लग रहा है। कि बात याद आ गई ना, जब हम फिजी में हुआ करते थे, गन्ने के खेत में ज़्यादातर पिताजी जो थे गन्ने के किसान थे, तो सुबह जब हम उठते थे ऐसे मौसम में 5-5:30 बजे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगता था। तो क्या करते, नारियल का जो ना होता है पत्तियाँ जो होती हैं उसको, उनको जो फोकला होता बोलते हैं, ये सब जुटा कर हम रखते थे। तो आकर उसको जला देते थे तो पूरे जो हम भाई बहन होते थे उसके राइट राउंड खड़े होकर और गर्मी वो आँच लेते थे। तो आज वो दिन याद आ रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज लता जी का दिन है मित्रों। एक और गीत है लता जी की आवाज़ में।

0: ये मित्रों अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, क्या बात है। हर शब्द में कुछ ना कुछ मतलब तो रहता है, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये। और अब आगे बढ़ते हैं और एक गीत के बाद लेकर आएंगे राव जी को। आप, मैं जानता हूँ बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं। कल 10 तारीख है, कल एक ऐसा दिन है जहाँ पर वेस्टर्न सिस्टम्स में ज़्यादा लोग मदर्स डे मनाते हैं, मातृ दिवस। और हमारा जो मातृ दिवस है उसको मैं कहूँगा मैं हर दिन मनाना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस तब होता है जब हमारे बीच हमारी माँ नहीं रहती है। और फिर उनके एक एक यादें, छोटी छोटी बातें, बहुत सारी बातें जो किए हैं जब तक वो जीवित थे, आज याद आती हैं, दिल को छू लेते हैं, दिल को रुलाते हैं, आँख भर आते हैं। और सलाह सही तौर से देते रहते थे कि बेटा कुछ समय निकालिए अपने लिए भी और आराम कीजिए, बहुत कुछ कर चुके हो और अपना ख्याल रखिएगा। ये आशीर्वाद के रूप में बहुत बढ़िया होता था। और पिताजी बेचारे शांत स्वभाव के रहते थे, वो कुछ खास बोलते नहीं थे, बस देख लेते थे, आंखों आंखों से बात कर लेते थे और मुँह घुमा लेते थे। वो ऐसा होता है तब जब जुबान कुछ बोलना चाहती है लेकिन बोलने में असमर्थ होती है, तो आँखों से बयां कर देती है। तो ये कुछ है, आज मैं उनको याद कर रहा हूँ क्योंकि कल मेरा प्रोग्राम नहीं, आज ही है, तो संदेशा कल का आज दे रहा हूँ कि जब तक आपके माता और पिता जीवित हैं उनसे भाई प्यार से मिला जुला करो, बातचीत करो। अगर देश विदेश में बसे हैं तो टेलीफोन कर लिया कीजिए और हालचाल ले लीजिए, कुछ कमी हो तो पूर्ति कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम आ गए, यहाँ आकर बसे, हमारे पास ईश्वर ने, मालिक ने सब कुछ दिया है और कोई कमी नहीं है। और कहते हैं ना, जब दान पुण्य करोगे तो बढ़ेगा। तो अगर माता पिता विदेश में हैं और आप उनके बारे में याद करें, सरप्राइज कभी कभी किया करो, कुछ ना कुछ भेज दीजिए, कुछ पैसा भेज दीजिए, नहीं तो फिर आजकल तो भाई आप डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं या ईबे में जाकर सौदा खरीद कर घर भिजवा सकते हैं, ये भी एक सरप्राइज है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि जब तक हैं तब तक अगर हम किए नहीं या सोचते रहेंगे, और जब वो नहीं रहेंगे फिर पछतावा आएगा कि आज हमारे बीच में मैं ये करना चाहता था, वो करना, वो फोकट की बात हो गई ना। फिर कहें वक्त के साथ हमें जो भी है तो वक्त के साथ करना चाहिए, करते चलना चाहिए। और हमेशा जो कुछ उन्होंने हमें दिया है हमें उसकी पूर्ति करना चाहिए सेवा के रूप में। और सेवा कोई अपने स्वार्थ के लिए हम नहीं करते हैं, दिखावा में नहीं करना चाहिए, दिल से कीजिए, ईश्वर का नाम लेकर कीजिए। सेवा में जो शक्ति है बहुत बड़ा पूजा है, मालिक कल्याण करेगा आपको। तो चलो एक गीत आया है, ये माँ पिता को, मैं सोचा कि दोनों को साथ में जोड़कर मैं चलूँ। रफ़ी साहब अदा कर रहे हैं, खूबसूरत सा गीत, आप कई बार सुने हैं लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ एक बार फिर।
1: ऐसे घर में रहना भी क्या?

0: पुजारी जी, यहाँ कुछ रहने का इंतजाम हो सकता है?
1: भगवान के घर में जगह की क्या कमी, परदेसी हो क्या?
0: जी परदेसी थे तो नहीं, लेकिन हो गए।
1: घबराओ मत, जब तक किसी दूसरी जगह का इंतजाम न हो जाए, भगवान के चरणों में यहीं कहीं रहो।
0: धन्यवाद प्रभु। आओ मैं।

0: तो मित्रों ये थे सदाबहार गायक रफी साहब, ले लो दुआएं माँ बाप की, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। और चलते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं राव जी। राव जी नमस्कार।
1: नमस्कार परमानंद जी,
0: कैसे हो आज आप?
1: बिल्कुल मजे में हैं और सूर्य का प्रकाश का आनंद ले रहा हूँ। अनुभव मन और बुद्धि से परे है
0: जी,
1: और परिभाषा के लिए मन और बुद्धि चाहिए। मनुष्य मोक्ष का दरवाजा है, इसीलिए हम यहाँ पर हैं और हम उस आज की दुनिया कहती है ऐसी चक्कर में मत पड़ो, उस चक्कर में पड़ो जिससे हमको माँ बाप की दुआएं मिलती है। आज तो हमारे माँ बाप तो है ही नहीं, और लेकिन उन्हीं के कारण, उन्हीं के बदौलत आज हम इस जगह पर बैठे हुए हैं। और दो चार शब्द, उन्होंने अपने मेहनत से जो कुछ भी हमको दिया वो हम लेकर के आ जाए हैं, और आज हम चलते हैं इंद्रिय मन और भाव पर कुछ विचार कर। चैतन्य की दो भूमिकाएं हैं, विकसित और अविकसित। विकास का सर्वाधिक निम्न स्तर एकेंद्रीय में होता है। विषय कुछ गंभीर है, हम ध्यान से सुनेंगे तभी पकड़ पाएंगे। उसके केवल एक स्पर्श इंद्रिय का विकास होता है और वो इंद्रिय लेकर के हम आए हैं इस दुनिया में। एक दो तीन आदि जीवों में चैतन्य का क्रमिक विकास होता है। दुतिंद्र का दो इंद्रिय स्पर्श और रसन का ज्ञान होता है। तीसरा के साथ घ्राण चतुरिंद्रिय के चक्षु यानी आंख, नजर जिससे हम देखते हैं, और पंचेंद्रिय के स्रोत विकसित हो जाते हैं। चैतन्य का दूसरा स्तर है मानसिक विकास। वह केवल पंचेंद्रिय जीवों की ही प्राप्त होता है। मनुष्य पांच इंद्रियां है और मानसिक विकास भी उसे प्राप्त है। यद्यपि इंद्रिय और मन दोनों चैतन्य के विकास हैं, यानी चेतना शक्ति का विकास है, फिर भी दोनों की विकास मात्रा में बहुत तारतम्य, और मन दोनों चैतन्य से विकार, फिर भी दोनों विकास यात्रा में बहुत तारतम्य है। इंद्रियां केवल वर्तमान को ही जानती है, मन भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को जानता है। इंद्रियों में आलोचनात्मक ज्ञान की शक्ति, ज्ञान की शक्ति नहीं है, मन में आलोचना की क्षमता है। वह इंद्रियों द्वारा गृहित विषयों का ज्ञान करता है और स्वतंत्र चिंतन थी। संज्ञा दो प्रकार के होते हैं। संज्ञान दो प्रकार के होते हैं, तत्कालिक और त्रैकालिक। तत्कालिक संज्ञान चींटी जैसे क्षुद्र प्राणियों में भी होता है। वे इष्ट की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होते हैं, किंतु वे भूत और भविष्य का संकलात्मक संज्ञान नहीं कर सकते। उनमें स्मृति और कल्पना का विकास नहीं होता है। इंद्रियां जैसे मति ज्ञान का निमित्त है, वैसे श्रुत ज्ञान की भी है। मन की भी यही बात है, वह भी दोनों का निमित्त है, किंतु श्रुत शब्द द्वारा ग्रहण वस्तु केवल मन का ही विषय है, इंद्रियों का नहीं। इंद्रियों का कुछ भी इसमें संबंध नहीं है। स्पर्श के बिना प्रत्यक्ष वस्तु का ग्रहण इंद्रियों और मन दोनों के द्वारा होता है। स्पर्श रस गंध रूप और शब्द आत्मक वस्तु का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है। उनकी विशेष अवस्थाओं और बुद्धि जन्य काल्पनिक वृत्तों का तथा पदार्थ के उपयोग का ज्ञान मन के द्वारा होता है। इस प्राथमिक ग्रहण अवग्रहण में सामान्य रूप से वस्तु पर्यायों का ज्ञान होता है। इसमें आगे पीछे का अनुसंधान, शब्द और अर्थ का संबंध, विशेष विकल्प आदि नहीं होते। इंद्रियां इन विशेष पर्यायों को नहीं जान सकती, इसलिए अवग्रह में वे संयुक्त नहीं होती है। जैसे इंद्रिय अवग्रह में मन संयुक्त होता है, अवग्रह के उत्तरवर्ती ज्ञान क्रम पर तो मन का अधिकार है ही नहीं। मन कुछ कर ही नहीं सकता जब तक इंद्रियां उसको सहयोग नहीं देते। ये थी एक मन और इंद्रिय मन और भाव पर एक वार्ता। वार्ता कुछ गंभीर थी, लेकिन पकड़ने वाले इसको पकड़ लेते हैं और हम अगले सप्ताह कुछ और विशेष रूप से इस पर प्रकाश डालेंगे। परमानंद जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। राव जी नमस्कार, अब मिलते हैं जी, थैंक यू। तो मित्रों ये थे राव जी और हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए चलें विज्ञापन के तरफ। पहले विज्ञापन बजाता हूँ, दो बजाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
2: आप माने या ना माने बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
3: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
4: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
3: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
4: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
0: तो मित्रों आगे बढ़ते हैं, इस समय लगभग 22 मिनट रह गए हैं 8 बजने में, और जन्मदिन का खबर इस गीत के बाद हम लेकर आएंगे। फिलहाल हम चलते हैं बहुत ही लोकप्रिय गीत के साथ। आज का पुराने गीतों का यह आखिरी गीत है। आज भी इस गीत में भी लता जी हैं।

जय मित्रों, रहे ना रहे, हम इसी के साथ ही पुराने गीतों का कार्यक्रम आज जो बजा रहा था मैं समाप्त हुआ। अगले शनिवार को एक बार फिर 7 बजे के बाद कुछ पुराने गीतों को लेकर आपके सेवा में हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और अब समय हुआ है जन्मदिन की खबरों का। जिनका आज जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है उन्हें भी याद कर रहे हैं, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद यहाँ से भेज रहे हैं। और साथ में अगर कुछ पार्टी वगैरह हो रहा तो भाई अच्छी तरह से कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। और परिवार के साथ मिलजुल कर अपना चाहे जन्मदिन मना रहे हैं या शादी की सालगिरह खूबसूरती से मनाएं, और कल मदर्स डे भी है उसे भी याद कीजिएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सोनू निगम और अलका याग्निक जी के साथ एक बहुत ही लोकप्रिय गीत लेकर मैं आया हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगे। तो ये आपके लिए जिनका जन्मदिन या शादी की सालगिरह है।

जय मित्रों, बहुत ही प्यारा सा ये नगमा था जो आप सुन रहे थे। और हम आगे बढ़ते हैं, एक और इश्क की बारिश है ये बजाते हैं आपके लिए। सुनो निगम, और जानते कौन गा रहे हैं साथ में? श्रेया घोषाल जी।

0: जमित रोइस की बारिश आप सुन चुके हैं, चले एक और विज्ञापन सुनते हैं, फिर एक और गीत, उसके बाद रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया आ जाएगा।
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
0: और इस समय 7 मिनट रह गए हैं 8 बजने में, और परमानंद के साथ आप संगीत सरगम प्रोग्राम को सुन रहे हैं। हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हुए चलें आतिफ असलम जी की आवाज में, दिल मेरी ना सुने।

0: जय मित्रों, दिल मेरी ना सुने दिल का मैं क्या करूं, आप सुन रहे थे। इसके साथ ही 3 मिनट रह गए 8 बजने में, चलें विज्ञापन ले लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
0: तो मित्रों, इस विज्ञापन के साथ साथ बस 8 बजने वाले हैं और अभी से लेकर ठीक 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया आपके सेवा में मैं परमानंद पेश करूंगा। आपका हार्दिक स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम, केम छो। और बढ़ते हैं। अच्छा, ये हुआ नहीं तो हम इसको पहुँचते हैं कहीं और, तो विज्ञापन बजाते हैं। चलो विज्ञापन बजाते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: और कल मातृ दिवस है या मदर्स डे है, तो इस शुभ अवसर पर रानी क्रिएशन सभी माताओं को याद कर रही है और अपना प्यार आशीर्वाद उनको भेज रही है। यही प्रार्थना कर रहे कि जहाँ भी हैं, जो भी हैं हमारे माँ वगैरह, वो उनका स्वास्थ्य जो है अच्छा हो, अपने परिवार के साथ सुखी से अपना जीवन को व्यतीत करते रहें, और हम जो संतान हैं उनके, हमें उनका सेवा करना चाहिए, क्योंकि सेवा से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। मित्रों, याद रखना यह बात। दिल से सेवा कीजिए, प्यार से सेवा कीजिए, जो आनंद उसमें मिलेगा किसी और चीज़ में नहीं मिलेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को शुरू किए हैं हम। और ये कह रहे हैं कि रानी क्रिएशन शॉप में अप टू 50% ऑफ सेल चल रहा है इस समय औरतों के कपड़ों पर, और इसमें बहुत बड़े रेंजेस हैं साड़ीज वगैरह के साथ में, बाकी जो आप ड्रेसेस पहनते हैं और सलवार कमीज, घाघरा चोली इत्यादि इत्यादि, और मर्दों के लिए बहुत सारे कपड़े हैं उस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, और ज्वेलरी पर अप टू 50% ऑफ डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इस मदर्स डे के अवसर पर कल आ रहा है जो, आपका स्वागत मैं कर रहा हूँ इस प्रोग्राम में। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ। अरिजीत सिंह साहब अदा करेंगे।

ये मित्र होते रहे फितूर, बहुत बढ़िया सा गीत था जो अभी आप सुन रहे थे। और आप सुन रहे हैं रानी कृष्णस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया। और फैशन की दुनिया कार्यक्रम हम हर शनिवार को ठीक 8 से 8:15 के बीच आपके लिए लेकर आते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े और एक्सेसरीज आपको मिलेंगे, शादी ब्याह कर रहे हैं तो वेडिंग आउटफिट्स भी मिलेगी, और मेन शूज, टेबन्स वगैरह, स्टॉल्स ये सब मिलेंगे, और दुल्हन के लिए बहुत सारे कपड़े हैं और एक्सेसरीज भी हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगला जो गीत है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, मदर्स डे के उपलक्ष्य में एक गीत लता जी की आवाज़ में।

जय मित्रों, माँ तेरी माँ जो मदर डे के उपलक्ष्य में गीत बजाए थे, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और हम आगे बढ़ते हैं, चलें जावेद की आवाज़ में ये लोकप्रिय गीत को सुनते हैं। जावेद अली साहब जो आए थे अभी हाल ही में ब्रिस्बेन, उनकी आवाज़ में भी बजाएंगे। और इसी के साथ साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया समाप्त होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं गीत के साथ।

0: जय मित्रों, इसी गीत के साथ साथ कार्यक्रम के बस समाप्ति पर हम पहुंच रहे हैं और अगले शनिवार को 8 बजे से एक और सेगमेंट लेकर आएंगे। फिलहाल हैप्पी मदर्स डे टू ऑल, और हर प्रकार के शॉपिंग के लिए, गिफ्ट के लिए रानी क्रिएशंस को 33 बालाकलावा स्ट्रीट उलंगेवा में आकर मिलें और देखें क्या यहाँ बिकता है और एंजॉय डिस्काउंटेड प्राइसेस।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगेबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: जय मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए चले संगीत सरगम को जारी करते हुए, जबकि लगभग 17 मिनट हुए हैं 8 बजकर। याद दिला दें कि निबिया जी आ जाएंगी 8:30 बजे से टॉप 10 को लेकर, और दिन में प्रोग्राम चलता रहेगा। कल सुबह आप जानते हैं पुरानी गीतों से और धार्मिक प्रोग्राम से शुरुआत होगी, लेकिन 8 बजे से नंद किशोर दास प्रभु जी लेकर आएंगे वेदवाणी, और उसके बाद जतीश पूरन जी लेकर आएंगे 9 बजे से एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए। बिया जी आ जाएंगी 8:30 बजे से टॉप 10 को लेकर, और दिन में प्रोग्राम चलता रहेगा। कल सुबह आप जानते हैं पुरानी गीतों से और धार्मिक प्रोग्राम से शुरुआत होगी, लेकिन 8 बजे से नंद किशोर दास प्रभु जी लेकर आएंगे वेदवाणी, और उसके बाद जतीश पूरन जी लेकर आएंगे 9 बजे से एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए, और फिर चलता रहेगा। फिरोज भाई आएंगे।

भूल जाएंगे हम सारी दुनिया के गम, एक पल तुम मिलो तो सही सनम। बहुत प्यारा सा गीत है। गाने कुछ अभी अच्छे अच्छे गाने हैं जो मैं याद आते रहते हैं, बजाते रहते हैं। हिमेश रेशमैया ने संगीत से संवारा है और उदित साहब श्रेया घोषाल जी के साथ इसे अदा कर रहे हैं।

0: ये मित्रों, एक पल दो घड़ी तुम मिलो तो सनम, आप सुन रहे थे, और चलते हैं विज्ञापन की तरफ, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में।
1: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के

0: सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: और दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलें। इस बार उदित जी अलका याग्निक जी के साथ आ रहे हैं, सीने में दिल, दिल में धड़कन।

0: ये मित्र वाला वाले भी बात हो सुन रहे थे आप एक गीत में, और चले आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए आपके लिए जो गीत बजाना चाहता था वो उस समय बजा नहीं था, देखता हूँ अगर मिल गया तो बजा दे दें। सीने में दिल, जी हाँ ये गाना था, सीने में दिल, नहीं ये गाना नहीं है। चलो, कविता कृष्णा मूर्ति और साथियों को गाया हुआ ये गीत बजाते हैं आपके लिए।
1: पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

या मित्रों गीत को ही छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि समय हो चुका है और निविया जी इंतजार करेंगी, उनको आने का वक्त होने वाला है। तो अगले शनिवार को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर परमानंद के साथ ठीक 6:30 बजे से एक और अनोखा संगीत सरगम नामक कार्यक्रम आप रेडियो ब्रिजवाणी के माध्यम से सुन सकेंगे। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। हम

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और मैं इतना ही आपसे पूछना चाहती हूँ कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे, रिया कैसा फील कर रहे हैं। और इससे पहले मैं बाकी की बातें पूछूं आपसे और कहूं हैप्पी वीकेंड। जी हाँ, हैप्पी हैप्पी हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन। मुझे पता है आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है वीकेंड का, मुझे भी रहता है, इनफैक्ट हम सबको रहता है। पूरा हफ्ता मशक्कत के बाद ये दो दिन हमें चैन और सुकून के मिलते हैं, जब अपनी रिलैक्सेशन के लिए, अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, अपने फन के लिए, अपने सुकून के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, अपने आप को और अच्छे से नरिश करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। सो अगेन, पूरा हफ्ता हम कामकाज करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन वीकेंड पे हम सिर्फ और सिर्फ मस्ती और मजा करते हैं। सो अगर आप वीकेंड के कॉन्सेप्ट को अभी तक नहीं जानते और वीकेंड पे भी आप अपने लिए बहुत सारे काम रखते हो तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अपने आप को पैम्पर करना, अपने आप को नर्चर करना, अपने आप को रिजुविनेट करना वीकेंड का मेन पर्पस है। एंड आई होप आप इस चीज को अंडरस्टैंड करते हो और मोस्ट प्रोबेबली आप करते ही होंगे, राइट। सो या वीकेंड इज हेयर एंड सो एम आई विद द प्रोग्राम टॉप 10 हॉट 10। एक ऐसा प्रोग्राम जब हम आपके लिए लेकर आते हैं उन 10 चुनिंदा गानों को जो एकदम मजेदार है, एकदम टॉप पे है, एकदम ट्रेंडिंग है और सबकी जुबान पर है, म्यूजिकल स्ट्रीमिंग साइट्स पर उनका दबदबा चल रहा है, और उन्हीं गानों के साथ मैं आ गई हूँ। आई होप आपने ब्रेकफास्ट अच्छा कर लिया हो, क्योंकि जब आपके पेट में अच्छा अच्छा खाना होता है ना तो आप और भी अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। सो आई होप आपने कर लिया हो अपना ब्रेकफास्ट, नहीं किया है, ब्रंच करना चाहते हो तो सोच लीजिए क्या क्या खाने वाले हो। तब तक के लिए मैं आपके लिए प्ले करती हूँ 10वें नंबर का पहला गाना। पहला गाना 10वें नंबर का, इससे मेरा मतलब है कि गाना तो हमारे प्रोग्राम का ये पहला है, लेकिन हम 10, 9, 8 से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे नंबर 1 यानी कि टॉप के गाने पर जाते हैं। सो 10वें नंबर पर जो गाना है वो है बहुत ही खास, क्योंकि वो है कृष्णा अवतारम पार्ट 1 द हार्ट हृदयम मूवी का गाना। और क्या है ये और क्या स्पेशल है इस मूवी में और क्यों ये गाना भी आपको बहुत ज्यादा स्पेशल लगने वाला है। आपको लगेगा कि ऐसा कौन सा गाना है, ऐसी कौन सी मूवी है, विच आई एम गोना टेल यू अबाउट। लेकिन पहले आप सुनिए ये खूबसूरत सा गाना।

जी दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि निव्या शर्मा ये क्या खूबसूरत सी शुरुआत है। मतलब गाने ट्रेंडिंग होंगे ये तो हमें पता ही था, लेकिन इतना खूबसूरत गाना कहाँ से लाई हो? वेल, मैं नहीं लाई हूँ, ये लाए हैं वो मेकर्स जिन्होंने इस खूबसूरत सी मूवी को बनाया है। वेल ऑफकोर्स ये मूवी भगवान कृष्ण और उनकी लीलाओं पर ही है, लेकिन पर्सपेक्टिव होगा रानी सत्यभामा का। जी हाँ, रानी सत्यभामा, अगर आपको नहीं पता है कौन है तो मैं आपको बता दूं कि रानी सत्यभामा कृष्ण भगवान की अष्ट महारानियों में से एक थी। जहाँ रुक्मणी जी का प्यार ऐसा कहा जाता था एकदम शांत था और बहुत ही खूबसूरत था, सत्यभामा जी का प्यार बहुत ही प्यारा तो था ही, खूबसूरत तो था ही, लेकिन उसमें सब कुछ था। मतलब उन्हें रुष्ट भी होना आता था, उन्हें प्यार भी करना आता था। जी हाँ, सत्यभामा का प्यार और उनका जो एक्सप्रेशंस होते थे, उनका जो नेचर था, ऐसा कहा जाता था कि उन सबके बावजूद कृष्ण भगवान ने उन्हें ऐसे ही प्यार किया। सत्यभामा ने कभी भी अपने आप को नहीं बदला, वो हमेशा प्यार तो करती ही रही कृष्ण भगवान से, लेकिन वो खुद भी खुद सी ही रही। जी हाँ, यहाँ पर कहा जाता है कि जब सत्यभामा जो कि महाराज सत्यजीत जी की बेटी थी, उन्होंने कृष्ण भगवान से शादी की, बहुत कुछ हुआ, और फिर उसके बाद उन्होंने नरकासुर का खात्मा भी किया। जी हाँ, जब नरकासुर ने पूरी की पूरी दुनिया में एकदम बवाल मचाया हुआ था, तब नरकासुर का वध कर उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि एक महारानी एक पति से प्यार भी कर सकती है, वो अपनी सारी ड्यूटीज को पूरी कर सकती है और उसके बाद वो वॉरियर भी बनकर रह सकती है। जी हाँ, सो जरूर देखिए, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव है सत्यभामा जी का। आपने हमेशा देखा होगा कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में राधा जी के पर्सपेक्टिव से, रुक्मणी जी के पर्सपेक्टिव से, बट दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम जब सत्यभामा जी के पर्सपेक्टिव से कहानी और कृष्ण लीला आपको देखने को मिलेगी। एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज आई एम गोना वॉच इट दिस वीकेंड, और जैसे कि मैं आज शाम को या कल ही से देखने वाली हूँ। सो या वॉच इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी ये कहानी, जो कि कहीं ना कहीं है सत्य। जी हाँ, यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना आपको सुनाते हैं जो कि है 9वें नंबर का। ये गाना है सुनो ना दिल। अब ये भी एक नई मूवी का है जो इसी हफ्ते रिलीज हुई है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दादी की शादी। जी हाँ, सुनते हैं इसको। खूबसूरत है गाना, बहुत ही चहकता महकता सा गाना है, और फिर करते हैं और बातें।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ ये जबरदस्त सा प्यारा सा गाना और बड़ा नॉटी सा क्यूटी सा गाना अगर मैं कहूंगी तो ज्यादा सही रहेगा। ये गाना है दादी की शादी मूवी का। दादी की शादी में नीतू सिंह दादी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और इसके लिए मेरे काफी लिसनर्स जो हैं वो काफी एक्साइटेड थे। जी हाँ, और मैं भी एक्साइटेड हूँ। इस मूवी को भी मुझे देखना है और मैं इसका पूरा रिव्यू करूंगी। अब मैं आपको इतना बता दूं कि इसमें कपिल शर्मा भी आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, हम सबके फेवरेट द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा, एग्जैक्टली उन्हीं की बात हो रही है। सो कपिल शर्मा आपको इसमें मिलने वाले हैं और साथ में नीतू सिंह मिलने वाली है, साथ में और भी एक्टर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं और वो सब के सब एक मैजिकल सी स्टोरी आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये कॉमेडी मूवी है, ये फैमिली मूवी है, आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं और लग गई है ये थिएटर्स में। सो गो फॉर इट, इट्स अ गुड वॉच एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी ये मूवी। इसी के साथ यहां पर आगे की ओर बढ़ते हैं और आठवें नंबर का गाना आपके लिए प्ले करते हैं जो कि AR रहमान का बनाया हुआ है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि उस खूबसूरत से गाने में आपको एक बड़ी ही क्यूट सी अभिनेत्री दिखेगी, पर वो तो तब दिखेगी जब आप इसकी वीडियो देखोगे। पहले आप ये गाना सुनिए, आपका दिल वहीं ये लूट कर ले जाएगा।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आयरलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरशे निव्या के साथ, और हम अपनी लिस्ट में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और अब वक्त हो गया है सातवें नंबर के गाने के लिए। जो सातवें नंबर पर गाना है वो है ओ सुंदरी। नाउ दिस सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी भूत बंगला, जो कि थिएटर्स में लगी हुई है। इसे 2 हफ्तों से ज्यादा हो गया है रिलीज हुए। मैं आपको बता दूं कि ये मूवी जो है हॉरर कॉमेडी है। अक्षय कुमार, वामिका गाबी और बहुत सारे और लोग आपको कॉमेडी तो दिखाएंगे ही, लेकिन साथ में डराएंगे भी। जी हाँ, और इससे मुझे थोड़ी सी भूल भुलैया वाली याद आ रही थी। ऑफकोर्स भूल भुलैया एक बहुत ही बड़ा मास्टरपीस है, लेकिन भूत बंगला क्या उस कसौटी पर सही उतरा है, खरा उतरा है या नहीं उतरा है, वो आप लोग डिसाइड करोगे। आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने भूत बंगला देख ली है, और अगर नहीं देखी है तो क्या इस हफ्ते आपका देखने का प्लान है? क्योंकि डर भी लगेगा, हंसी भी आएगी, और हॉरर कॉमेडीज के लिए पिछले 2 साल बहुत ही अच्छे रहे हैं। लेट्स सी यहां पर कैसा जा रहा है भूत बंगला के लिए, वो जो बिजनेस है वो कैसा हो रहा है। बट यहां पर लोगों के रिव्यूज अच्छे भी हैं और ठीक ठीक से भी हैं। आप मुझे बताइए आपको मूवी कैसी लगी, इन केस आपने देख ली है। उसी का गाना ओ सुंदरी आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें तब्बू भी है। जी हाँ, तब्बू भी है इसमें, और तब्बू हमें कितनी प्यारी है इसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आइए जरा आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दें कि क्या क्या आप देख सकते हैं इस वीकेंड थिएटर्स में जाके। वेल ऑफकोर्स सुंदरी और मुंदरी, मतलब कि भूत बंगला, तो आपकी चॉइस हो ही सकती है। इट्स अ हॉरर कॉमेडी एंड इट्स अ फैमिली मूवी। यू कैन लिटरली गो फॉर इट विद योर फैमिली। इसी के साथ दादी की शादी, जो कि मैंने बताया, कपिल शर्मा, नीतू सिंह और बाकी मजेदार स्टार कास्ट के साथ एक और मूवी है जो कि आप देख सकते हैं, जो कि इस ही हफ्ते रिलीज हुई है। मैंने कहा था मेरे लिसनर्स को काफी इंतजार भी है उस मूवी का, सो अगेन वो भी देख सकते हो। प्लस दैट इज ऑल्सो अ फैमिली मूवी दैट यू कैन वॉच विद योर फैमिली, विद योर किड्स। आई मीन ऐसी मूवीज बहुत ज्यादा आती नहीं है आजकल, खासकर बॉलीवुड मूवीज। सो यू नो वॉट, फायदा उठाइए इसका और ले जाइए अपने बच्चों को, ले जाइए अपनी फैमिली को। इस ही के साथ कृष्णा अवतारम, जो कि मैंने बताया, आप देख सकते हो कृष्ण भगवान की लीला लेकिन सत्यभामा की नजरिए से, और वो भी आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। जी हाँ, इसी के साथ धुरंधर कैन ऑल्सो बी योर ऑप्शन। आप लोग बोलोगे कि धुरंधर अभी भी चल रही है? हाँ चल रही है, लेकिन कुछ ही थिएटर्स में, और अब उतरने ही वाली है ऑलमोस्ट। तो आप धुरंधर 2 देख सकते हो, और उससे पहले धुरंधर देखना चाहते हो तो वो नेटफ्लिक्स पर है। इसके अलावा कुछ हॉलीवुड मूवीज हैं जो कि आपका ऑप्शन हो सकती हैं। आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो, लेकिन पहले मैं आपको सुनाऊंगी 6वें नंबर का गाना जो कि इस हफ्ते की लिस्ट में है, और वो भी है धुरंधर द रिवेंज, यानी कि धुरंधर द 2 का गाना।

0: Celebrate Mum this Mother's Day with Digicel. Digicel is giving away cash prizes when you send top up or money transfer to My Cash Wallet in the Pacific. Simply send $20 or more Digicel top up or send $300 or more money transfer from any of our money transfer partner websites to your family and friends in the Pacific with a My Cash Wallet. And you enter the draw to win one of 15 $500 cash prizes. Send a $20 top up or $300 money transfer today for your chance to win $500 cash to celebrate Mum this Mother's Day. Terms and conditions apply.
1: Bigger, better deal.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे. ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
3: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
4: जी दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ. तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में बात हो रही है और साथ है बहुत ही मजेदार ट्रेंडिंग गानों का, खूबसूरत गाने, मजेदार गाने जो आपके वीकेंड को और भी ज्यादा मजेदार बनाने के लिए तैयार है. जी हाँ, तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं. जैसे मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है इस वीकेंड अपने नजदीकी सिनेमा घरों में. मैंने आपको बॉलीवुड मूवीज के बारे में बता दिया, मैंने आपको बता दिया हिंदी मूवीज में आपको क्या क्या मिलेगा, लेकिन अब जरा मैं बात करती हूँ हॉलीवुड मूवीज के बारे में, क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में भी काफी चीजें आपको मिलने वाली हैं. सबसे पहले मैं बात करूं मोर्टल कॉम्बैट सेकंड की. ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों को इसका भी इंतजार था, और मोर्टल कॉम्बैट सेकंड जो है वो ऑफकोर्स एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी जो है वो मूवी है, एंड यू आर गना लव इट. और ये एक फ्रेंचाइजी का हिस्सा है, सो ऑफकोर्स शायद आपको इसके बारे में पहले ही पता है, इस पर गेम भी बेस्ड है. जी हाँ, ये लगी हुई है, आप इसे देख सकते हैं. इसी के साथ द डेविल वेयर्स प्राडा 2. जी हाँ, द डेविल वेयर्स प्राडा जो कि लेजेंडरी मूवी है, बहुत साल लग गए दूसरा पार्ट आने में, लेकिन एन हाथवे और मेरिल स्ट्रीप फिर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आ चुकी है. आपको फैशन, ह्यूमर और बहुत ही मजेदार सा फैशन और साथ में बड़े ही ह्यूमरस तरीके से सर्व करने के लिए. जी हाँ, यहाँ पर प्रोजेक्ट हेल मैरी अभी भी लगी हुई है. रायन गॉसलिंग की ये मूवी है, इट्स अ साईफाई मूवी एंड यू कैन वॉच इट अभी भी. जी हाँ, इसको लगे हुए काफी वक्त हो गया और ये ऑलमोस्ट अब सिनेमा घरों से उतरने वाली है. सो इससे पहले ये उतरे आप देख लीजिए, क्योंकि काफी अच्छे रिव्यूज इस मूवी के हैं. वहीं अगर बात की जाए हॉरर मूवीज की, तो एक मूवी जो कि आपकी रातों की नींद को उड़ा सकती है, जो आपको बोन्स तक चिल फील करवा सकती है, जो आपको डरा सकती है, आपको क्रीपी भी फील करवा सकती है, लेकिन अगर वो जॉनर आपको पसंद है तो फिर आप इसे देख सकते हैं. वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट ली कॉनिंस द मम्मी. मतलब ये मूवी आपको सिर्फ डराएगी नहीं, आपको अंदर तक और बहुत देर तक डरा देगी. मतलब दिस इज द ओनली मूवी जिसको देखकर मुझे ऐसा लगा था कि ओके, क्या मैं भाग सकती हूँ सिनेमा घरों से. जी हाँ, बट ऑफकोर्स आई एम गोना से इट लाउड एंड क्लियर कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि जो इसे सर्व करना है उसे ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर्व कर रही है. एक और बॉलीवुड मूवी जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की थी. वेल, राजा शिवाजी द ग्रेटेस्ट लेजेंडरी हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज द मराठा किंग, उन पर बनी है मूवी, और इसमें आपको मिलने वाला है हिस्ट्री और साथ में बहुत सारे गूजबम्प्स. जी हाँ, सो हिस्ट्री सर्व हो रही है गूजबम्प्स के साथ, और यहाँ पर बड़ी ही जबरदस्त स्टारकास्ट है इस मूवी की, और इसमें रितेश देशमुख आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के तौर पर नजर आएंगे, उनकी वाइफ, उनकी बीवी के तौर पर नजर आएंगी. संजय दत्त है, अभिषेक बच्चन है, विद्या बालन है, और साथ में भाग्यश्री और फरदीन खान भी है. मैंने कहा ना, बहुत ही बड़ी स्टारकास्ट है, लेकिन एक टेस्टफुल स्टोरी सर्व करने की कोशिश हुई है. ऑल्दो अभी भी मैं यही कहूंगी कि एक्टर जो मेन कैरेक्टर है रितेश देशमुख की जगह कोई और प्ले करता, रणवीर सिंह या विकी कौशल की तरह कोई और, तो ज्यादा प्रेफर करती मैं. बट ऑल्दो दिस मूवी कैन बी अ गुड वॉच, गो फॉर इट. अगेन, दिस कैन, यू कैन वॉच दिस विद योर फैमिली, सो गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी. इसी के साथ अगला गाना यानी कि पांचवें नंबर का गाना मैं आपको सुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, और ये गाना है खासियत. जी हाँ, और ये है चांद मेरा दिल मूवी का गाना जो कि आने वाली है.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है साई पल्लवी की मूवी एक दिन का। जी हाँ, और एक दिन मूवी में साई पल्लवी है जुनैद खान के साथ, आमिर खान प्रोडक्शन हाउस के तले ये मूवी बनी है। और साई पल्लवी का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस तो है ही, मतलब उनकी सिंप्लिसिटी से लोग प्यार करते हैं, उनका फैंडम जो है वो कोई छोटा फैंडम नहीं है। लेकिन आज उनके बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। तो जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से साई पल्लवी आपको, और रेडियो ब्रिस्वानी की तरफ से हम यही कहेंगे कि आपकी जिंदगी के लिए ये साल बहुत ही खूबसूरत रहे, हेल्दी वेल्दी आप रहें, और आपकी जो मूवी आने वाली है रामायणा उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, सो पीपल जिनको नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि जो रामायणा मूवी आ रही है जिसका ट्रीजर अभी कुछ वक्त पहले आपने देखा था, जो कि बहुत ही बड़ी मूवी मानी जा रही है, बहुत हैवी बजट में ये मूवी बनी है। तो रणबीर कपूर लॉर्ड राम का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। आई नो यू आर गोना से व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई डोंट अग्री टू दैट ऑल्सो, बट साई पल्लवी एज अ सीता इज नॉट अ बैड चॉइस, दैट्स व्हाट आई एम गोना से। उनकी सिंप्लिसिटी जो है वो डेफिनेटली उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस करेगी, और साथ में आपको मिलने वाले हैं बहुत ही खतर रावणा भी। जी हाँ, आई एम नॉट गोना टेल यू हु इज गोना प्ले रावणा, बट या साई पल्लवी का जन्मदिन है तो उन्हीं की मूवी का एक गाना ट्रेंड कर रहा है एक दिन का। और एक दिन अभी भी थिएटर्स में लगी हुई है लेकिन बहुत ही चुनिंदा थिएटर्स में लगी हुई है, मतलब अब ये लौटने वाली है, ओटीटी के लिए जाने वाली है। तो ऑफकोर्स आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, इट कैन बी अ गुड वन टाइम वॉच। Although I'm not that much a fan of this movie क्योंकि मैंने ट्रेलर से ही उसे इतना ज्यादा पसंद में नहीं कर पाई, but yeah, for Sai Pallavi you can watch it।

जी दोस्तों, और साई पल्लवी को हमने बर्थडे विश कर दिया है, तो मैं कहती हूँ एक और व्यक्ति को बर्थडे विश कर देते हैं, और उनको भी बनता है बर्थडे विश करना, क्यों? ऑल्दो उनका किसी भी मूवी का कोई भी गाना इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन मैं उनको बर्थडे विश इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि इस साल उन्होंने जो धूम मचाई थी, मैं भूल नहीं सकती. मतलब ही इज द ग्रूम ऑफ द ईयर, और आई वुड से ग्रूम ऑफ द डेकेड और सेंचुरी. आई वुड नॉट से सेंचुरी बट डेकेड फॉर श्योर. वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट विजय देवरकोंडा. या मतलब एक बंदा जिसने ग्रूम की ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया. मतलब दूल्हे कितनी ज्वेलरी पहन सकते हैं. आज से पहले ऐसा कहा जाता था कि दुल्हने ही ज्यादा ज्वेलरी पहनेंगी. दूल्हे बेचारे जो है वो शेरवानी में आ जाते थे, कोट पेंट में आ जाते थे, या फिर आ जाते थे कुर्ते में या धोती में, है ना. मतलब ज्वेलरी के नाम पर ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी ज्वेलरी पहन लेते थे. लेकिन अब देवरकोंडा यानी कि विजय देवरकोंडा ने जब से शादी की है रश्मिका मंदाना से, उन्होंने बता दिया है कि दूल्हे बिल्कुल सज सकते हैं किसी युवराज की तरह. मतलब पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के वक्त जब शादियां हुआ करती थी तो उस वक्त दूल्हे वैसे ही सजते थे, बंदे लोग वैसे ही सजते थे. तो विजय देवरकोंडा ने कह दिया कि कपड़े हो चाहे गहने हो, आप जा सकते हो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा, एंड किसी ने आपको रोका नहीं है, और आप इसे बहुत ही गजब तरीके से कर सकते हो. सो या, जन्मदिन के बहुत बहुत मुबारकबाद विजय देवरकोंडा आपको हमारी तरफ से, रेडियो ब्रिजवानी की तरफ से, और आपने जो मोनोटनी तोड़ी है यहां पर उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड वी लव योर ऑल आउटफिट्स एंड योर मूवीज टू. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये साल आपके लिए अच्छा रहे, खूबसूरत रहे, हेल्दी रहे, आप हैप्पी रहे, और वेल्थ तो आपके पास है ही. आपकी शादी के गहनों से ही दिखता है कि आपके पास कितनी वेल्थ है. तो मैं वेल्थ विश नहीं करने वाली, वो आपके पास है ही. जी हाँ, इसी के साथ यहां पर एक और गाना जो कि है तीसरे नंबर का गाना, और इसने भी काफी तबाही मचाई हुई है, खासकर जानवी कपूर ने जब से इस पर रील बना दी है, और आपको शायद पता होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ, और फाइनली हम पहुंच गए हैं दूसरे नंबर के अपने गाने के ऊपर। जी हाँ, गाने का नाम है तू ही दिसदा और ये गाना है भूत बंगला मूवी का। जी हाँ, भूत बंगला मूवी का ये गाना है और ये प्यारा और रोमांटिक ट्रैक है। सो ऑफकोर्स इसमें आपको डर और हंसी नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको रोमांस जरूर निकल कर आएगा। सो ये है तू ही दिसदा, बहुत ही प्यारा गाना है, प्रीतम का बनाया हुआ। सुनते हैं इसका और फिर करते हैं और भी बात।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, क्योंकि यहाँ पर घड़ी ने इशारा कर दिया है कि निव्या शर्मा बस ओके बाय, जाइए अब यहाँ से, क्योंकि हमें और भी चीजें करनी है। इतनी सारी आपने लिस्ट बना दी हमारे लिए, वो करने का वक्त भी तो दीजिए हमें। चले ठीक है, अब आपने वक्त मांगा है तो देते हैं आपको मंडे तक का, क्योंकि फिर से आएंगे मंडे को, फिर से गपशप करेंगे और फिर से गाने आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए आपको जो मन चाहे आप कीजिए, कुछ अच्छा सा कीजिए, कुछ फनी सा कीजिए, कोई बढ़िया सा कीजिए। और कल है मदर्स डे, तो अपनी मदर्स के लिए कुछ स्पेशल करना बिल्कुल मत भूलिए। ऑल्दो एवरी डे शुड बी मदर्स डे, दैट आई एम गोना से हियर लाउड एंड क्लियर, बट एटलीस्ट कल जो मदर्स डे है, जो 10th of May है, उसको स्पेशल बनाइए, कुछ अच्छा सा गिफ्ट लीजिए। गिफ्ट नहीं ले सकते तो कहीं उनको लेकर जाइए, ड्राइव पर लेकर जाइए, डेट पे लेकर जाइए, डिनर पे लेकर जाइए, यू नो किसी भी चीज पर कुछ अच्छा सा जेस्चर उन्हें दिखाइए, बिकॉज इट्स मदर डे एंड मदर्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आर लाइफ। मदर्स जो हमारे लिए करती है ना, इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, नोबडी, लिटरली नोबडी। सो या डू इट एंड लेट मी नो आपने क्या स्पेशल किया अपनी मदर के लिए। एंड इसी के साथ बाय, सी यू, टाटा। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि है धुरंधर द रिवेंज का ही गाना, गाने का नाम है आखिरी इश्क। जी हाँ, और ये मेरा फेवरेट गाना है धुरंधर द रिवेंज से, और ये नंबर 1 पे बना हुआ है। सो ऑफकोर्स आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू, टाटा। मिलते हैं अब आपसे मंडे को।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
4: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
4: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
5: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
6: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
5: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
6: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
5: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
6: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
5: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
6: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
7: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।